0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
3: शान रिजालत मौला जाने।

मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जने पढ़ू था दरूद सजन से पान दरूद बुधन था, यानी जब भी हम सरकार पे दरूद भेजते हैं वो हमारा दरूद समाज फरमाते हैं, ये हमारा अकीदा है। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। समाज

नारा लगाएं, इलाके वालों को पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए इस पिंडाल में मौला अली के आशिक बैठे हैं। बावाज़े बुलंद, मैंने वापस सिंध जाना है, आपकी आवाज सिंध तक मेरे कानों में गूंजती रहे। बावाज़े बुलंद हैदर।

आशिक बैठे हैं तो अभी उतनी आवाज नहीं आई। महफिल वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं तो जानता था किधर है, सारे ही महफिल वाले। हाँ, ये जितने स्टेज पे बैठे हैं इनको इतनी आवाज सुनाए, इतनी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जितनी ये आशिक अब निकालेंगे। समाज फरमाए बाबाजे बुलंद, जितनी अल्लाह ने जान में ताकत दी है उतनी जान के साथ मोराली के नारे का जवाब देना है। बाबाजे बुलंद, हैदर वर्गा सकीन कोई वेखी आए जग सारा सफर दबेड़ा।

0: बस खत्म। जो बाहर खड़े हैं वो भी बोल दे
1: हो नारे हैदरी।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: आशना अपनी हकीकत से हो ए दहकां जरा, दाना तू खेती भी तू बारां भी तू हासिल भी तू। आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रहरो भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

ईरान सां अमन मुआहदे ते सयूं अॼु थींदियूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जो ऐलान। सदर ट्रम्प चयो आहे त ईरान सां मुआहदे ते सयूं थींदे ई आपना हुर्म सभिनी लाइ खुली वेंदो। सकून थियण बाद मुनासिब वक़्त एटमी मवाद जी बाक़ायत बि हासिल करे वठंदासीं। उमीद आहे त ॻाल्हियुनि वारो समूरो अमल जल्द ऐं आसानी सां मुकमल थी वेंदो। असां ईरान ऐं विच ओभर जे मुल्कनि सां गॾिजी कम करण जा मुंतज़र आहियूं। आबनाए हुरमज़ खुलण बाद जे 7 मुल्कनि सां गॾु बारूदी सुरंगूं साफ़ करण जो बि कम शुरू कयो वेंदो। असांजो मुआहिदो ओबामा जे मुआहिदो जहिड़ो नाहे। ईरान खे मुआहिदे एवज़ का बि रक़म न ॾिनी वेंदी।

ईरानी फौज अमरीकी सदर ट्रंप जे अॼु अमन मुआहदे ते सहन वारी दावा रद्द करे छॾी। ईरानी पासदान इनकलाब फौज जो चवण आहे त ईरानी मुज़ाकरात कार जो अचणु ॾियारे कंहिंजी बि मुआहदे ते सहन न करण बाबति आगाह करे चुका आहिनि। सदर ट्रंप सही वारी तकरीब पंहिंजे सालगिरह जे करे 14 जून ते करणु चाहे थो। ट्रंप हुन मौके ते अलामती अहमियत ॾेई पंहिंजे ज़ाती मशहूरी जो प्रोग्राम बणाए रहियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान अमरीका अमन मुआहिदो फाइनल थियण जो इम्कान ज़ाहिर करे छॾियो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त ईरान अमरीका अमन मुआहिदे जा नुक़्ता 24 कलाकनि में फाइनल थी वेंदा। ईरान अमरीका अमन मुआहिदे लाइ अॻे खां वधीक वेझो पहुची चुका आहियूं। ईरान ऐं अमरीका विच में ईंदड़ हफ़्ते टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियूं थींदियूं। पाकिस्तान ॿिन्ही मुल्कनि विच में अमन मुआहिदे ते डिजिटल सहण लाइ तयारियूं करे पियो, पर पूरो यकीन आहे त अमन मुआहिदे खिते में चटादार अमन जो बुनियाद विझंदो। वज़ीर आज़म ट्वीट अमरीकी सदर ट्रंप रीट्वीट करे छॾियो।

ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई जनाज नमाज ए अलविदाई तकरीबन इज्तमान जो शेड्यूल जारी। ईरानी मीडिया मौजिब आयतुल्लाह खमनाई जनाज नमाज की अलविदाई तकरीबन 4-5 जुलाई तेहरान में मुनक्कद थी। जनाजे की तकरीब 6-7 जुलाई तेहरान ए कुम में थी। शहीद आयतुल्लाह खमनाई के 9 जुलाई से मस्जिद में इमाम रजा के मजार में तदफीन कई वी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से कतरीह मनसब शेख तमीम बिन हमद अल सानी जो फोन से राबतो। वजीर आजम पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत कतरीह मनसब जो थोरा मना। वजीर आजम ऑफिस मौजूब कतरी अमीर वजीर आजम शहबाज शरीफ ए फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर के भेटा पेश कई। कतरी वजीर आजम चो तो सफारती कोशिशों के अगते वधायण में शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल अहम किरदार अदा कर। उम्मीद से इन कदम का चटदार अमन कायम थन्द। वजीर आजम चो तो लागापली दौरे विच में जल्द अमन मुआहदो थन्द।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
2: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
3: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
2: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252576
3: जी हा 2315525786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

ईरान सां अमन मुआहदे ते सयूं अॼु थींदियूं, अमरीकी सदर ट्रम्प जो ऐलान। सदर ट्रम्प चयो त ईरान सां मुआहदे ते सयूं थींदे ई आमन हुरमत सभिनी लाइ खुली वेंदो। सकून थियण बाद मुनासिब वक़्त ते एटमी मवाद जी बाक़ियात तब हासिल करे वठंदासीं। उमीद आहे त ॻाल्हियुनि वारो सुमरो अमल जल्द ऐं आसानी सां मुकमल थी वेंदो। असां ईरान ऐं विचोभर जे मुल्कनि सां गॾिजी कम करण जा मुंतज़र आहियूं। आमन हुरमत खुलण बाद जी सेवन मुल्कनि सां गॾु बारूदी सुरंगूं साफ़ करण जो कम शुरू कयो वेंदो। असांजो मुआहिदो ओबामा जे मुआहिदे जहिड़ो नाहे। ईरान खे मुआहिदे एवज़ का बि रक़म न ॾिनी वेंदी।

ईरानी फौज अमरीकी सदर ट्रंप जे अॼु अमन मुआहिदे ते साइन वारी दावा रद्द करे छॾी आहे। ईरानी पासदारनि इनकलाब फोर्स जो चवण आहे त ईरान सां ॻाल्हियूं कंदड़ आचर जहिड़े कंहिं बि मुआहिदे ते साइन न करण बाबति आगाह करे चुका आहिनि। सदर ट्रंप सही वारी तकरीब ऐं सालगिरह जे करे 14 जून ते करणु चाहे थो। ट्रंप हुन मौके ते अलामती अहमियत ॾेई पंहिंजे ज़ाती मशहूरी जो प्रोग्राम बणाए रहियो आहे।

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरान अमरीका अमन मुआहदे फाइनल थियण जो इम्कान ज़ाहिर करे छॾियो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चयो त ईरान अमरीका अमन मुआहदे जा नुक़्ता 24 कलाकनि में फाइनल थी वेंदा। ईरान अमरीका अमन मुआहदे लाइ अॻु खां वधीक वेझो पहुची चुका आहियूं। ईरान ऐं अमरीका विच में ईंदड़ हफ़्ते टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियूं थींदियूं। पाकिस्तान ॿिन्ही मुल्कनि विच में मुआहदे ते डिजिटल सहण लाइ तयारियूं करे पियो। पूरो यकीन आहे त मुआहिदो खिते में जदादार अमन जो बुनियाद विझंदो। वज़ीर-ए-आज़म जो ट्वीट अमरीकी सदर रीट्वीट करे छॾियो। नायब वज़ीर आज़म मिसाक डार ऐं सऊदी परडे वज़ीर फैसल बिन फरहान विच में टेलीफोनिक राब्तो। परडेही खाते जे तर्जुमान मूजिबि ॿिन्ही अॻवाननि अमरीका ईरान मफ़ामत खे खिते जे अमुन लाइ अहम करार ॾेई छॾियो। अमरीका ईरान ॻाल्हियुनि हतमी मरहले में दाख़िल थी वियूं। डिजिटल सहयोग करण वारी तक़रीब आचर ॾियारे थियण जो इम्कान। सऊदी परडे वज़ीर पारां ॻाल्हियुनि वारे अमल में पाकिस्तान जे काविशनि खे साहरायो। ॿिन्ही मुल्कनि विच में अमरीका ऐं मोहम्मद सईद लती सां बि राब्तो। अमरीका ईरान विच में जारी राब्तनि ते जल्द मज़बूत नतीजा साम्हूं अचण जी उमीद जो इज़हारु।

0: ऐं कुंडरी वेझो शख़्स जो अंब जे वण मां फाहु लॻल लाश थ। 16 वाटर वट सिखू कूलीअ जो वण मां फाहु लॻल लाश मिलियो। इतलाह ते पुलिस वाके वारे ते पहुची लाश खे इस्पताल मुंतकिल कयो। पुट किरशन कुली चवण आहे त वालिद खे गुज़िरियल ॾींहुं नशो करण खां मना कयो त हुन काबड़ जी आबकात कयो आहे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते
2: आप सुन रहे थे जीए एफ एम नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। White H Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White H Beauty Cream, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
5: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलाइण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252578 6।
5: जी हाँ 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मात।
0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
1: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: जारी कल बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी चाहे हर मसले जो सियासी हल कर पुरजम आयु इलेक्शन कमीशन का वक्त का अग चूंड शेड्यूल वापस कर मुतालबो कर चुका हूं। अल तवा हेठ शिकायतों के अजारे लाए प्रूट एंड रेस्ट कंसली एशियन कमीशन कायम करने की कोशिश कंदासीं।

ईरान सां बिन मुआदे ते सयूं अॼु थींदियूं। अमरीकी सदर ट्रम्प जो ऐलान। सदर ट्रम्प चयो आहे त ईरान सां मुआदे ते सयूं थींदे ई अबन हुरमत सभिनी लाइ खुली वेंदो। सकून थियण बाद मुनासिब वक़्त ते एटमी मवाद जी बाक़ियात बि हासिल करे वठंदासीं। उमीद आहे त ॻाल्हियुनि वारो समूरो अमल जल्द ऐं आसानी सां मुकमल थी वेंदो। असां ईरान ऐं विचोबर जे मुल्कनि सां गॾिजी कम करण जा मुंतज़िर आहियूं। अबन हुरमत खुलण बाद G7 मुल्कनि सां गॾु बारूदी सुरंगूं साफ़ करण जो कम शुरू कयो वेंदो। असांजो मुआदो ओबामा जे मुआदे जहिड़ो नाहे। ईरान खे मुआदे वज़ का बि रक़म न ॾिनी वेंदी। ईरानी फ़ौजी अमरीकी सदर ट्रम्प जे अॼु मुआदे ते सयुनि वारी दावा रद्द करे छॾी आहे। ईरानी पासदारनि ख़िलाफ़ फ़ौज चवण आहे त ईरान पारां ॻाल्हियूं कंदड़ आचार ॼाणे कंहिं बि मुआदे ते सयूं न करण बाबति आगाह करे चुका आहिनि। सदर ट्रम्प सही वारी तकरीब पंहिंजे सालगिरह जे करे 14 जून ते करणु चाहे थो। ट्रम्प उन मूंखे अलामती अहमियत ॾेई पंहिंजे ज़ाती मशहूरी जो प्रोग्राम बणाए रहियो आहे।

0: कोन रीवे जो अदलत शख्स जो अंब के वण में फाहो लगल लाश थे सोरा वाटर वट सिखू कोली जो वण में फाहो लगल लाश मिलो इतलाते पुलिस वाके वाले हंध पहुंची लाश के अस्पताल मुंतकिल किया। पुट किशन कुली चवणा त वालिद के गुजरल नशो करण का मना कर तो उन कावड़ की आपघात कर। आए पीर जो गोठ में शहर जो वदनड़ बदमनी खिलाफ थाने अग्न धरणो नारेबाजी शहर जो पीर जो गोठ ए बरपासे वाले इलाक में बदमनी वी वही है। सब मानू गैर महफूज आन कतल ए फुरजा वाकया मामूल बणजी वन हुकूमत अमन बहाल कराए।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 0331252576।
5: जी हाँ 2315525786
4: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क, सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
3: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252576।
3: जी हाँ 2315525786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क जिंदगी आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो।

0: डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीम उल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

ईरान ऐं अमरीका जंग जे ख़ात्मे लाइ मुआदे ते सयूं अॼु थींदियूं या न, अमरीका ईरान जे बयाननि ते सूरत हाल वाज़ी न थी सघी। अमरीकी सदर ट्रम्प जो चवण आहे त ईरान सां अमन मुआदे ते सयूं अॼु थींदियूं। मुआदे ते सयूं थींदी या अबन हुरमत सभिनी लाइ खुली वेंदो। सकून थियण बाद मुनासिब वक़्त ते एटमी मवाद जी बाक़ियात बि हासिल करे वठंदासीं। ईरानी फ़ौज अमरीकी सदर ट्रम्प जे अॼु अमन मुआदे ते सयन वारे दावा रद्द करे छॾी। ईरानी पासदान इनकलाब फोर्स जो चवण आहे त कंहिं बि मुआदे ते सयूं न करण बाबति आगाह करे चुका आहियूं। सदर ट्रम्प सही वारी तकरीब पंहिंजे सालगिरह जे करे 14 जून ते करणु चाहे थो। ट्रम्प हुन मौके ते अलामती अहमियत ॾेई पंहिंजे ज़ाती मशहूरी जो प्रोग्राम बणाए रहियो आहे। रत ते रुबर सां हथियारबंदनि जी मोटरसाइकिल सवारनि ते फायरिंग, ॿ ॼणा मारिजी विया। घोट मीर मोहम्मद जलबाणी लाड़े वटि हथियारबंदनि ॿिनि ॼणनि खे गोलियूं हणी क़तल करे छॾियो। मक़तूलनि जो 45 साल लालू जोयो ऐं 55 साल राजा जोयो तौरु सुञाणप। लाश अस्पताल मुंतकिल। वारसनि चवण त जतोई बिरादरी हथियारबंदनि नौजवान खे क़तल कयो आहे। आगे बसन बिरादरी जो हिकु अहलकार खे क़तल कयो वियो हो।

कुंडरी जो अदलत शख्स जो लंब के वण में फाव लगल लाश थ सोरह वाटर वट सिख कुड़ी जो वण में फाव लगल लाश मिलो। इतलाह ते पुलिस वाकई वारे हंध पहुंची लाश के अस्पताल मुंतकिल कयो। पुट किशन कुली चवण त वालिद के गुजरियल ॾींहुं नशो करण खां मना कयो। उन कावड़ जी आपघात कयो आहे।

0: पीर जो गोठ में शहर के वधंदड़ बदमनी खिलाफ थाने अगियां धरणो नारेबाजी। शहर जो चवण है पीर जो गोठ ए भरपासे में बदमनी वधण सब मानू गैर महफूज आन। कतल ए फुर जा वाकया मामूल बणजी विया। हुकूमत अमन बहाल कराए। उडेरो लाल में बिजली की ड्रिगी लोडशेडिंग ए वाबा इंतजामिया के नाजाजन खिलाफ शहर जो एहतजाज। शहर ए वापारन बिजली की लोडशेडिंग खिलाफ स्टेशन रोड बंद कर छो। शहर जो बिजली की असर बंद सब पीण के पानी जो बहरान पैदा थी वो है। कारोबार में मुतासर थी रो है। बिना देर बिजली की ड्रिगी लोडशेडिंग जो खात्मो आने शहर के अजाब का बचाया वे। आयसिन में पानी की शदीद खोट बरकरार। आबादगार तबको सरापा एहतजाज बढ़ल। टिकराटो के मुबारकपुर बमरी मंडल में पानी खोट खिलाफ आबादगारन आहारन जो एहतजाज मुजाहरो। सन में मांझन तालके के छछर पंपिंग स्टेशन की बंदिश खिलाफ आबादगारन आहारन जो एहतजाज। अगवान जो पानी की खोट सबब पोखियल फसल सड़ी रहा है। जानवर बुंज वगे मर रहा है। पानी की खोट खत्म कर आबादगारन के परेशानी का बचाया वे।
1: सोलर ए बैटरी से डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज GAFM 90.4।
5: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
6: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
6: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331252576।
6: जी हाँ 2315525786
5: GAFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 4।

आप लोगों तक पहुंचाया जाता है सिर्फ और सिर्फ व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ताबुन से। तो अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बताएंगे जी, सब कुछ बताएंगे। यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी आंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में बनेगी चटपटा मसाला। बिकॉज आली रे आली सिद्राली बोस आपके होंठों पर 440 उल्के समय लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्के समय लाते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जी आज एक बहुत प्यारे से कलाम के साथ। तो बहुत प्यारा सा कलाम सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है। तो आपका हमारा साथ पूरी पूरी 3 बजे तक आप सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए क्योंकि आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं और खूबसूरत होते जा रहे हैं।

और क्या ही प्यारा कलाम मैंने लिस्ट में लगाया है, और इसी के साथ साथ आप लोगों को बताते चलें जनाब, ये प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो। और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात हो, जरा इसी बातें आप लोगों को बताया जाएगा और आप लोगों को जरा जो है ना वो एजुकेट किया जाता है इस मामले में कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो उस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए, लेकिन नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी होती है और नॉलेज भी फुल वाली, हाफ नॉलेज होती है ना वो डेंजरस होती है, तो फुल नॉलेज है ना वो हासिल किया करें और हमारा प्रोग्राम सुना करें ताकि आप लोगों को ये पता चले कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनका इस्तेमाल आप लोगों की खूबसूरती को कैसे बढ़ाएगा। ओके जी, तो बढ़ते हैं प्रोग्राम को जरा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ तो वो जरा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो टॉपिक आज के प्रोग्राम का कुछ इस तरह से होने वाला है, जैसे मैंने कलाम आप लोगों को सुनाया कि दुनिया मतलब की है, ये तो हम हर कोई कहते हैं, ये तो हमने सुना भी है हर किसी से कि आगे से इंसान बोल रहे होते हैं कि दुनिया मतलब की है, हम खुद भी कह रहे होते हैं, हमने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है। तो मुझे जो है ना आपने ये बताना है कि जबकि हर कोई अगला इंसान हमें ये कहते हुए जो है ना हम उसे सुन रहे होते हैं कि दुनिया मतलब की है, तो मुझे जरा आप ये बताएं कि जब सारे लोगों के साथ दुनिया में मतलब चल रहे हैं, हर किसी के साथ ठगियां चल रही है, तो ठगी कर कौन रहा है, ये मतलब निकाल कौन रहा है, वो कौन है जो सच में जो है ना वो मतलब ही है। यानी कि ऐसा तो कोई नहीं कि हमें आखिर किसी ने ये बोला होगा भाई माँ मतलब ही आया, हाँ माँ माणो सन ठगियूं कयूं आया, माँ वो इंसान आया जेको मतलब वारो कम कंदो आहे, सो मुखे ता यो बुधायो छा तव्हां खे जेको आहे यो बुधाइणो आहे त तव्हांजी नज़र में उहो केर इंसान आहे जेको तव्हांखे लॻे थो त वाकई ही मतलब ही आहे, या फिर जेके माण्हू ज्यादातर ईअं चवंदा आहिनि त दुनिया बाबा मतलब जी थी वई आहे, त वाकई छा उहे माण्हू मतलब ई हूंदा आहिनि। बहुत सारी बातें जो की आज के प्रोग्राम में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बहुत सी बातें जो की आप लोगों के साथ हम आप लोगों से सुनने वाले भी हैं, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और मुझे बताएं कि वो कौन लोग हैं जो मतलब ही होते हैं। हाँ जी, और इसी के साथ साथ जो है अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अपना सेलफोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LR के सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, तो जीए लाड़काना FM 88.8 जो है ना हमारा पेज है, अगर आप जीए लाड़काना FM 88.8 सर्च करते तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। पेज पर आइए, वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिलती है जो है जनाब व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो की, जिसे आप लोगों ने लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर कर देना है। तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करते जाइए और बताइए कि आप भी हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम का हिस्सा है, और बताइए आज के दौर में मतलब ही कौन है, आपको क्या लगता है। ये जो लोग कहते हैं कि भाई दुनिया मतलब की है, अगला इंसान मतलब ही है, ये मतलब ही, तो कैसे हमें ये पता चले कि अगला इंसान मतलब ही, मतलब आपको क्या लगता है बताइए मुझे। और आदिल हुसैन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है बताएं कैसे हैं जनाब, लिखते हैं चेहरे ते हमेशा मुर्क हुजे, जमानो जाने जमाने जा मतलब ही माण्हू ॼाणे, ॾिसो ॾिसो ॾिसो ॾिसो। ओके जी, वेलकम हो गया आपका, और तमाम गानो चाहिए हुआ, ठीक है जी, और कहते हैं अच्छा ठीक है ठीक है, ओके ओके। सैयद फारूक हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद, कैसे हैं, आपको भी वेलकम करते हैं। पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करें बहुत ज्यादा वाला। और AM अंसारी लिखते हैं कि मुझ में आज भी वो छोटा सा बच्चा जिंदा है जो रात को रोते रोते सो जाया करता था, सिडो समझे थी न माँ अञा बार आया, बिल्कुल माँ समझा दी तव्हां बार नंढा पितकड़ा उआ उआ करण वारा, ऐं तव्हांखे चवंदा ख़ुश आमदीद प्रोग्राम में शामिल आहियो। मोलाई मुजाहिद बोज़दार हमारे साथ मौजूद है, हेलो ज़वार बचल मोहम्मद शम्पानी भाई हमारे साथ मौजूद है, और ये राजा खान भाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, अदा मसफा बलिया है, ताम उदा की आयो, खुश चंगा बल्ला, और कहते आज सॉन्ग सुनाइएगा, बिल्कुल मैं अच्छा गले में लगाऊंगी आपकी पसंद का गाना। अशफाक अली हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम अशफाक, और जवार भाई कहते भाजी प्रोग्राम जबरदस्त आहे, सलाम सभी दोस्तन के, प्रोग्राम दस जबरदस्त आहे, पर जेके प्रोडक्ट तव्हांखे ॿुधायां थी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐं जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इन्हनि खे इस्तेमाल कयो था कोन, इहो बि त ॿुधायो, जीअं ख़बर पए त बाबा सोणा सोणा माण्हू असांजा जेके लिसनर्स आहिनि वधीक सोणा थी विया आहिनि, छो त इस्तेमालु कनि पिया प्रोडक्ट जेके उन्हनि खे ॿुधाया वञनि।
अशफाक कहते हैं कि को याद कंदे ई विसरी वयो को विसरी विसरी याद रहो को प्यार डई न विसरी वयो को दर्द डई याद रहो बस याद अचे माजी वयो वक्त हो को गुजरी वयो वाह वाह वाह वाह अच्छा मोलाई मुजाहिद बोजाट हूँ चूसल सी हमारे साथ वालेकुम अस्सलाम जी और क्या कहते हैं हाँ मैं एकदम से लश पेश हूँ और कहते हैं हमेशा हंसी मुस्कुराती रहे आप भी हमेशा खुश रहें बाश रहें और सईद फारूक कहते हैं स्पेशली माय लाडली आरजे सिद्रा मुस्कान सियाने कहते हैं कि माँ एक अजीम दर्शगाह है उस लिए मैंने सोचा है अपने बच्चों के लिए 3 से 4 दर्शगाह बनाऊं अच्छा ये अगर आपकी बीवी ने सुन लिया ना अच्छी खासी आपको कुटकी मिलने वाली है वैसे एक है बीवी आपकी या फिर नहीं आप अभी से प्लानिंग कर रहे हैं चले एक तो करें फिर देखी जाएगी आगे की और उसके साथ साथ जो ना पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है आजकल के दौर में कौन मतलबी है हाँ बताइए मुझे मैं जानना चाहती हूँ इसके साथ साथ प्रोग्राम का ऐसा बनिए और ज्यादा से ज्यादा पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए और हाँ डायल कीजिए 03 1 5 7 99 05 95 और लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं तो सुनती रहिए हमारा साथ दीजिए मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं खूबसूरत होते जा रहे हैं

0: جي اف ام.
1: आप सुन रहे हैं TFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: आई। हाँ, गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलाइण लाए
4: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ, बुड़ी 331 5 7 86।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। मौजूद है हमारे साथ सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरेंड मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपके सदरा आपके साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, अपने होने का एहसास लाते जा रहे हैं और जनाब प्रोग्राम का हिस्सा बनकर प्रोग्राम की रौनकों को मजीद बढ़ाते जा रहे हैं। तो बढ़ाइए जी प्रोग्राम की रौनकों को, बताइए कि आप भी हमारे साथ मौजूद हैं और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रौनकें तो बढ़ाएंगे लेकिन खूबसूरतियां कैसे बढ़ाई जाती है इसके ऊपर जरा ये मुद्दा एक अहम मुद्दा है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे कि अगर आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे आप मर्द हजरात हैं या फिर आप खवातीन हैं, टीनेजर्स हैं या फिर वो लोग जो कि अपनी स्किन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आप लोगों ने सबसे पहली बात घबराना नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मार्केट में व्हाइट एज प्योरी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। जब मार्केट में व्हाइट एज प्योरी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं तो समझ लीजिए कि छा चुके हैं। और जब व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र आता है तो मैं तो भाई बाग बाग हो जाती हूँ क्योंकि इतनी अच्छे प्रोडक्ट्स तैयार किए गए हैं जिनमें आप लोगों के लिए यानी कि हर एक इंसान के लिए प्रोडक्ट तैयार है। यानी कि ऐसा नहीं कि अब आप सोचेंगे कि भाई जान मेरी टाइप वाला प्रोडक्ट तो है ही नहीं, हर तरह का प्रोडक्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जो जो एक इंसान की नीड होती है ना, मतलब वो सारी चीजें इन्होंने समझकर और सारी चीजों के ऊपर स्टडी करके फिर ही इन्होंने आप लोगों के लिए व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जो है ना वो तैयार किया है। व्हाइट एज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारे आप इस्तेमाल करेंगे और ना सिर्फ आपकी खूबसूरती बढ़ती है मेरी जान बल्कि आप लोग बहुत ज्यादा हसीन हो जाते हैं। बहुत ज्यादा हसीन से मुराद ये कि अगर आपकी स्किन जो है वो रूखी सूखी हो चुकी है, आपकी स्किन डल हो चुकी है, आपकी स्किन के ऊपर जो है ना वो दाने आ चुके हैं या फिर आप लोगों के पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं जिसको लगाने के बाद आप फ्लेक्स कर सकेंगे भाई जान देखो मैं मेकअप नहीं लगाती हूँ। अगर आप भी मेकअप नहीं लगा पाते हैं, गर्मियों का सीजन है और आपके पास कोई अच्छा सा प्रोडक्ट नहीं है, तो भाई व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स है ना बताते हैं कि किस तरीके कार को फॉलो करके आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाएंगे। तो इसमें सबसे पहली बात जो है वो ये कि आप लोगों को ये नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट मौजूद है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे कि प्रोडक्ट्स कौन से हैं। तो अगर हम बात करें व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम की, तो सबसे पहले हम व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम है जो कि नाइट क्रीम है, उसके साथ आपको डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मिल रहा है जो कि एक नीज के खात्मे के लिए है। यानी कि दाना अगर तुम्हारे चेहरे थे मौजूद आयन टोनन की तुम्हारा खत्म करी सको था, न सिर्फ दाना मजीद आयन भी चीजों बुधाया थी। व्हाइट एसी लवली क्रीम तुम्हारे लाइ मौजूद है। व्हाइट एसी लवली क्रीम जगह ही फेयरनेस क्रीम आई नाइट क्रीम है फेयरनेस क्रीम में छा डिफरेंस हूं बुधाया थी। आई व्हाइट एस जो साबुन आए तमाम वट व्हाइट एस जो फेस वॉश आए तमाम वट ठीक है। आई लोशन भी आए व्हाइट एस वारन जो हेयर रिमूवल जो लोशन भी आए ठीक है। ये तमाम प्रोडक्ट्स आए जगह तमाम की इजीली किथा भी मिली सकन था, तमाम बस पांजे करीबी जनरल स्टोर से वनो था उता नालो वठी करे तमाम तलब कयो था तमाम के नथा मिलन तो उन जो हल भी आए तमाम जे लाए नंबर आए जेते तमाम डायल करी नंबर के उनते कॉल कयो मैसेज कयो उनन के दसो त बाबा फलानी जगह ते कोन था मिलन तमाम जा प्रोडक्ट त अवेलेबल कराए छियो त बिल्कुल अवेलेबल कराइंदा। ये नंबर आ 03157990595 नंबर ते रावतो कयो अगर तमा भी चाहियो तमा जे एरिया में मिलन घुर्जन व्हाइट एज प्रोडक्ट। तो बिल्कुल जी अगर असा व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जी गाल कयो तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जगह तमा जी खूबसूरती के बधाई दिया है। आई व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जगह हिकड़ी नाइट क्रीम आहे जगह तमा राजे टाइम इस्तेमाल करी सगो ता तमा जी स्किन के फ्रेश बणाईंदी फेयर बणाईंदी तमा जी स्किन जी हिफाजत करंदी उनन सबनी चीजन खां जेकी तमा जी स्किन के खराब करण में जेको ना अहम किरदार अदा कंदा आहे। अगर तमा जी स्किन ते काफी झुरियूं अची वयूं आहिनि या फिर डार्क सर्कल्स वधी वया आहिनि या फिर तमा जी स्किन जेका मुरझायल लॻे थी त तव्हां व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो बाबा। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जे इस्तेमाल खां पोइ तमा जी स्किन सफ़ा फ्रेश थी वेंदी, ग्लोइंग थी वेंदी ऐं तव्हां जवान थी वेंदा। छो त व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जे अंदर एवोकाडो मौजूद है, मिल्क मौजूद है, एलोवेरा मौजूद है। ये सब चीजों एड करे पो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम के तैयार कयो है। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम से गड तमा व्हाइट एज ब्यूटी सोप इस्तेमाल करना या वरी फेस वॉश इस्तेमाल करना इन बिन्हीं चीजों में जैमें भी तमा कंफर्टेबल है वह चीज तमा इस्तेमाल कयो। अगर तमा साबुन हणो था तो तमा साबुन हणदा, अगर तमा क्रीम हणो था तो तमा क्रीम हणदा। कोड़ सारा मानू जेके मुखे चवंदा है भाजी असा क्रीमू कोन हणदा है गाल ते सीधी तो बाबा मुडा भी गाल सीधी तो तमा साबुन ही तमा फेस वॉश लगाए दिसो ता सही है। ये चीजों आए जेके तमा कम जो आ साबुण फेस वॉश तो कॉमन गाल है हर कोई इस्तेमाल करना बेसिक नीड हर एक इंसान जी। तो तवहां अगर क्रीम नथा लगायो तो तव्हां साबुण ऐं फेस वॉश लगाए सघो था ठीक आहे। ही कुझु अहिड़ा प्रोडक्ट हूंदा आहिनि जेके तव्हां एनी हाउ लगाए सघो था। यानी कि अगरि तव्हांजी ज़रूरत जेका आहे तव्हांजी स्किन खे जेको आहे न ज़रूरत हूंदी आहे बाबा पंहिंजी तव्हां केयर कंदा कयो, सेल्फ केयर ॾाढी ज़रूरी शइ आहे। सो तव्हां पंहिंजी स्किन जो ख़्यालु रखो, तव्हां साबुण लॻायो, उन सां फेस वॉश कयो, व्हाइट एज

सो ही गाल हुई वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स जी मुआमा का पुछो आए तो तमागे छातो लगे जी दोरे में मतलब ही केर आहे यानी कि वो कौन है जो मतलबी है हर किसी से हमने सुना है लोग कहते हैं भाई जमाना मतलबी हो चुका है हाँ जी तो बताएं कौन है मतलबी क्या उसकी ऐसी निशानियां हैं कि हम समझ पाएंगे ये वाला इंसान मतलबी है अगर ये बताइए मुझे जल्दी से और इसी के साथ साथ पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए आप कहां से हमें सुन रहे हैं बताइए अच्छा साहिल खान हमारे साथ ही साहिल खान वालेकुम अस्सलाम वेलकम कहते हैं कल मैंने आपको बोला था कि खुदा मोहब्बत का गाना चलाइए बिल्कुल मुझे आज याद है आपके लिए गाना लगाएंगे बस आप हमारे साथ मौजूद रहिए ओके जी अब्दुल गफूर केसर हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम अब्दुल गफूर केसर आपको खुश आमदीद कहते हैं मीर बेबस हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून अशफा कहते हैं भी डी हुआ जाके गुजरी गया हाँ जाहिर सी गाला है और आबिद बस आगे का क्या लिखा हुआ ये समझ नहीं आ रहा सो आबिद आपको वेलकम करते हैं अच्छा मोहम्मद जमान भाई हमारे साथ मौजूद है वेलकम मोहम्मद जमान भाई कहते हैं व्हाइट एशियन टी स्किन ब्यूटी शो आहो ए एम अंसारी लिखते हैं संडे के दिन भी आ गई आप वाह साड़ी नींद चोरी हो गई हुण की करें कुड़िए संडे वाले दिन तो मैं आती हूँ बस जुम्मे को छोड़कर जुम्मा नहीं आती पर संडे वाले दिन तो मैं आती हूँ नींद को गोली मारो एंजॉय करती हूँ

ओगरे किशोर भाई हमारे साथ कहते हेलो हाय अद्दा खुश आयो हैप्पी संडे वेलकम प्यारे भाई. उबेद सहदो हमारे साथ मौजूद है कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बॉस जी कैसी हैं आप. मैं ठीक हूं बताएं कैसे हैं. किशोर भाई कहते हैं टॉपिक हम सब करते हैं हम सब मतलबी हैं ये झगड़ा होना चाहिए ये बात एक्सेप्ट करने में. अच्छा उबेद कहते हैं इतना मुश्किल टॉपिक सच्ची बताए. सैयद फारूक कहते हैं बाजी मेरे लिए मेरी भी एक फरमाइश है सॉन्ग सुनाए. ये कड़ो गानो है.

प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइटेश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आपके सिद्धराम के साथ मौजूद है। मैंने आप लोगों से पूछा है मुझे बताइए मतलबी आज के दौर में कौन है, कैसे पहचाना जाए कि अगला इंसान मतलबी है, बताइए मुझे जरा। किशोर भाई कहते हैं आजकल कोई एक शख्स नहीं बचा जो मतलबी ना हो। अशफाक कहते हैं कि मतलबी माँ पानी आया, हर को मतलबी आया, क्या बात है। उबेद कहते हैं अल्लाह माफ करे आसान त न आई हूँ बाबा मतलबी तव्हां त अॼु शर्मिंदा पया कयो सभिनी खे न न मां त पुछां भई न।

की पोस्ट को लाइक और शेयर करिए। और साथ साथ सैयद फारूक कहते हैं जो क्लोज होते हैं वो मतलबी होते हैं। अच्छा, ये नई बात पता चली हमें। और एहसन यार बाड़ी हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम एहसन, चाला तानो खुश आयो। नाजिक अली हमारे साथ है वीआईपी शो, थैंक यू नाजिक भाई। और ये एम अंसारी कहते हैं टॉपिक पर जो सेल्फिश है वो ही मतलबी है, अना परस्त और खुद परस्ती मतलबी। केतरो समझा थो बार थी। अच्छा, मुखे समझायो था सही से, महानी वनी थी भैया। इकबाल लाशरी हमारे साथ मौजूद है। हेलो इकबाल भाई, कैसे हैं?

उबेर कहे पई ऐं अवां जो टॉपिक त अॼु ॾाढो भलो ऐं मुश्किल बि आहे पर असां बाबा सिधा सादा माण्हू आहियूं त कूड़ न ॻाल्हाईंदासीं थी सघे थो त किथे न किथे असां बि मतलबी हुजो ओ इहा ॻाल्हि कई न कम जी ॻाल्हि चलिए अच्छी बात है ये क़बूल करण ई बहुत बड़ी बात होती है और उन खां अलावा अच्छा मौलाई मुजाहिद बोजार के टॉपिक अला ना करिए सिद्रा जी आप पर बुरा वक्त आए उस वक्त आपको पता चलेगा मतलबी कौन से लोग हैं मुझ पे बुरा वक्त आया था उस वक्त मुझे पता चला कि मतलबी लोग कौन से थे कुछ अच्छे लोग भी थे जिन्होंने मेरा साथ दिया बाकी मतलबी लोग सामने आ गए ये तो अच्छी बात है ये बिल्कुल सही बात आपने हमारे साथ शेयर कर दी कि बुरे वक्त आने पर ही पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया अच्छा दर्दी दिल हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम स्वीटी कहती है वेलकम टू शो में भी आ गई शो में क्या बात है वेलकम ओके जी सो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर नहीं आप हमारे साथ शेयर करते जा रहे हैं कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताना बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं तो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक ऐसी प्रोडक्ट है जिनका इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों की खूबसूरती आप लोगों के साथ रहेगी आप लोगों के चेहरे पर ग्लो रहेगा आप लोगों की खूबसूरती जो है वो मेंटेन रहेगी और आप लोगों को जो खूबसूरती मिलेगी वो हमेशा आपके साथ मौजूद रहेगी अच्छा अली अकबर बरोही भाई हमारे साथ मौजूद है बहुत शुक्रिया वेलकम करते हैं सकरण से आप हमारे साथ हैं क्या बात है अच्छा उबेर से तो कहते हैं कराची में नहीं है ये क्रीम बॉस जी क्या करें कराची वाले लोग परेशान हैं भाई कराची में अवेलेबल कराते हैं सबर करें वहीद वफाई हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम सिद्रा जी क्या हाल है आपके मैं बेहतरीन आप बताएं कैसे हैं अच्छा साबिर खान हमारे साथ हैं हेलो ओके अनवर भाई वालेकुम अस्सलाम कैसे कहते चंड रखे तो नियापो कजा अन्या हसरतन जा दिया था बरन अंदर के आसरा अन्या ताई था रहन असा वक्त जी चीच नाहे छड़ी हलिया जिंदगी एडी नाहे वडी वाह वाह उबेद कहते हैं साबुन बेस्ट ऑप्शन है बॉस जी हाँ जी बिल्कुल आप साबुन इस्तेमाल कीजिए जो लोग क्रीम नहीं लगा पाते वो साबुन और फेस वॉश की जानेब आइए और आपके लिए वाइट एज की लवली क्रीम भी है क्योंकि ये एक फेयरनेस क्रीम है जिसका इस्तेमाल आप इजीली कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन क्रीम है आप मेरे कहने पर लगा कर देखिए आपको मजे आ जाएंगे

अच्छा तो किशोर भाई कहते हैं टॉपिक कहती जी इंसान वट रेस्ट करण जो टाइम न होजे हु तमाजे हर शो में 2 घंटा सिर्फ सिर्फ तमाजे शो ते तवज्जो दे हन का वधिक मतलब ही केड़ो हुंदो यो मतलब ही त न छेबो ना यो तो प्यारो मानु छेबो आई मोहबत हु आइन बाबा ये तो आंसर कुर्ब है ना अल्लाह अल्लाह मां केतरो मतलब शुक्रिया अदा कया मो लव्ज नाइन मिलदा मुखे अब्दुल रजाक हमारे साथ मौजूद है वेलकम करती हैं अब्दुल रजाक भाई आपको वासा भाई हमारे साथ मौजूद है हेलो वासा भाई दीदार अली बिरोही हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम पोस्ट को लाइक को शेयर करें आज मुझे लोग काफी ज्यादा नजर आए और मुझे लाइक जो है ना वो कम नजर आ रहे हैं तो लाइक करें जिन लोगों ने नहीं किया

अच्छा सना वाला बिरोही हमारे साथ है, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, बहुत दिनों के बाद शामिल हो रहा हूँ जी, आपको खुश आमदीद कहते हैं। मोहम्मद सलमान कहते हैं टॉपिक में मतलब ही हूँ, मेरी मतलब मेरा मतलब है कि काश आज ही, हाँ भाई ये मतलब तो नहीं कह सकते इसको, चले कोई बात नहीं। और लुबना हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम लुबी कहती, सिडू जानी मैं भी आपके साथ साथ हूँ, तमाम बेहतरीन शो, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी लुबी।

0: अच्छा एम अंसारी इंडियन गाने नहीं चल पाते हैं भाई।
1: Body on TikTok, call me round the clock, there will be no hesitation, no one to misguide you, always on time girl.
0: तो कोई पाकिस्तानी और सिंधी गाने की फरमाइश कीजिए जरा। हाँ अंग्रेजी होना चाहिए, अरबिक होना चाहिए, तुर्किश होना चाहिए, रशियन होना चाहिए, और भी बहुत सारे गाने हैं जो कि आप फरमाइश कर सकते हैं, बस इंडियन को छोड़ के। ओके जी, सो आपका हमारा शो है ये, जिसमें आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं, हम आपके साथ मौजूद होते हैं पूरी पूरे 3 बजे तक आपका हमारा साथ रहने वाला है। प्रोग्राम में जनाब White Age and D-Skin Beauty Show स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है White Age Beauty Products and D-Skin Beauty Products। आप इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, अरे भाई कीजिए ना, ये क्या बात हुई भला। तो जल्दी जल्दी से हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनते जाइए और इस्तेमाल करते जाइए। 1-5-799-0595 लेते हैं यहाँ पर न्यूज ब्रेक, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। मैं यू जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड इन कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड ईस्ट स्किन ब्यूटी शो।

0: no hesitation.
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: अमरीका ईरान विच में मफाहमत लाइ हाकारी अगबराई जी आज या हाकारी अगबराई सां खिते में चटरदार अमन जो रस्तो खुलण जी उमीद ज़ाहिर कई वई। ॿिन्ही अॻवाणनि जो सिटंड अगबराई जे हवाले सां राब्ते में रहण ते इतफ़ाक़। पीपी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी चयो आहे त आज़ाद कश्मीर में जारी बेचैनी पाकिस्तान खे नुक़सान ॾेई रही आहे। अहिड़ी सूरतहाल दुश्मन अंसर भारत ऐं इसराइल गठजोड़ खे पंहिंजा मक़सद हासिल करण में गैर ज़रूरी मौको फराहम करे रही आहे। जारी कयल बयान में बिलावल भुटो ज़रदारी चयो त हिन वक़्तु पूरी दुनिया जो ध्यान पाकिस्तान तरफ़ आहे। इस्लामाबाद मुआहिदे ते सहियूं पाकिस्तान लाइ तारीख़ी लम्हो हूंदो। सियासी शिकायतनि ऐं इख़्तिलाफ़नि जो हल जमहूरी आइनी ऐं पुरमन ज़रियनि मां करणु घुर्जे। पार्लियामान ऐं सियासी अमल अहिड़ा मसला हल करण लाइ मुनासिब फोर्म्स आहिनि। असां हर मसले जो सियासी हल करण लाइ पुरज़म आहियूं। इलेक्शन कमीशन खां वक़्त खां अॻु चूंड शेड्यूल वापसि करण जो मुतालबो करे चुका आहियूं। अल्तवा हेठि शिकायतुनि जे अज़ाले लाइ ट्रोट एंड रिकंसली एशियन कमीशन क़ाइमु करण जी कोशिश कंदासीं। सुद समा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अताउल्ला तारड़ चयो आहे समूरी दुनिया क़बूल कयो त पाकिस्तान अमुन लाइ किरदार अदा कयो। अॼु क़ौमी झंडे जी इज़त आहे, मेशत बि दुरुस्त रस्ते ते गामज़न आहे। जिथे मुल्क जी इज़त जी ॻाल्हि हुजे उते पंहिंजी ज़ात जी इज़त महसूस करणु घुर्जे। वफ़ाक़ी वज़ीर क़ौमी असेंबली में बजट सेशन खे ख़िताब कंदे चयो त बजट ते तनक़ीद ऐं एतिजाज अपोज़िशन जो हक़ आहे, पर हकारी क़दमनि जी वाकाण थियणु घुर्जे। समूरनि शोबनि सां मुशावरत बाद बजट तयार कई वई, हर तबिके खे फ़ाइदो पहुचायो वियो। पीटीआई वारनि आया त पंहिंजो आई एम एफ खे लिखियल ख़त तारीख़ जो हिसो आहिनि। शहबाज शरीफ ॾींहुं रात महिनत करे न करे अवां उन हिमत वारी आच मञो हा। रदतरु भरिसां हथियारबंदनि जी मोटरसाइकिल सवारनि ते फायरिंग, ॿ ॼणा मारिजी विया। घोट मीर मोहम्मद अलबाणी लाड़े वटि हथियारबंदनि ॿिनि ॼणनि खे गोलियूं हणी क़तल करे छॾियो। मक़तूलनि जी 45 साल लालू जोयो ऐं 55 साल राजा जोयो तौरु सुञाणप। लाश इस्पताल मुंतकिल। वारसनि चवण आहे त जतोई ब्राज हथियारबंदनि नौजवान खे क़तल कयो आहे। अकबर खे क़तल कयो वियो आहे। सेवण में दरगाह हज़रत लाल शहबाज़ कलंदर जो सीसीटीवी ऑपरेटर कराची में फुरदुरान मज़म्मत ते क़तल। कराचीअ जे सोराब ॻोठ वारे इलाक़े में हथियारबंदनि नौजवान शाहिद सोलंकी खे फुर मज़म्मत ते गोलियूं हणी क़तल कयो। इतलाउ त घर में रोजराड़ो मची पियो। कुंडरी वेझो दुड़ शख़्स जो अंब जे वण मां फाहु लॻल लाश हथ। 16 वाटर वट सिखू कुली जो वण मां फाहु लॻल लाश मिलियो। इतलाउ ते पुलिस वाके वारे हंधि पहुची लाश खे इस्पताल मुंतकिल कयो। कुझु चवण आहे त वालद खे गुज़िरियल ॾींहुं नशो करण खां मना कयो, उन कावड़ जी आबकात कयो। पीर जो ॻोठ में शहरनि जे वधंदड़ बदमनी ख़िलाफ़ थाणे अॻियां धरणो। नारेबाज़ी शहरनि जो त पीर जो ॻोठ ऐं भर पासे में बदमनी वधण सां माण्हू गैर महफ़ूज़ आहिनि। क़तल ऐं फुर जा वाकिया मामूल बणजी विया आहिनि। हुकूमत अमन बहाल कराए। सिंध में गर्मी मथां वरी बिजली जी लोड शेडिंग अवाम लाइ अज़ाब करे छॾियो। मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा। मीरपुर माथो जो मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जे रवासियुनि जो बिजलीअ जी बंदिश ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो। सिजावत जोड़जो में बिजली जी मेन लाइन जो तारूं चोरी थियण, बिजली जी बंदिश ख़िलाफ़ शहरनि जो धरणो। उडेलाल में बिजली जी डिघी लोड शेडिंग ऐं वापार इंतिज़ाम जे नाजाइज़नि ख़िलाफ़ शहरनि जो एहतजाज। शहरनि ऐं वापारनि बिजली जे लोड शेडिंग ख़िलाफ़ स्टेशन रोड बंदि करे छॾियो। शहरनि चयो त बिजली जी बंदिश सां पीअण जे पाणी जो बहरान आहे, कारोबार बि मुतासिर थी रहियो आहे। बिना देर बिजली जी डिघी लोड शेडिंग जो ख़ात्मो आणे शहरनि खे अज़ाब खां बचायो वञे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ जीए एफएम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफएम रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनि

0: बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331255786।
0: जी हां, बुड़ी 331-25-25-786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: It's 2:15 PM.
3: This time check is brought to you by
4: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीह जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। ओके जी, प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो बताइएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो साथ साथ डायल करते जाइएगा 03 15 799 059।

हाणे सोणो बि सोणो आहे, कीअं न हुजे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल जो करे पियो। अगरि तव्हां बि सोणा थियण चाहियो, इस्तेमाल कयो, डी स्किन ब्यूटी वॉश बि मिली रहियो आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो, डी स्किन फेस वॉश लॻायो, पंहिंजे ख़ूबसूरती खे चमकायो ऐं हमेशह जे लाइ ख़ूबसूरत थी वञो। हुन खां अलावा जेको असां सां गॾु मौजूद आहिनि, सखर मोरो, मिरपुर ख़ास, मटियारी, सकरन, मेहरापुर, मातली ऐं लाडकाणे वारा बि रोज़ना बिल्कुलु प्रोग्राम जी लास्ट लिंक में असां मौजूद आहियूं। तव्हांखे चवंदा भली कार, ख़ुश आमदीद, तव्हांजो मोहबत।

अच्छा सजाद अली जमाली भा असा के जेको ने गाने जी फरमाइश कई हुई सो असा ही गानो बुधोसी उनका अलावा बियो गानो असा जी लिस्ट में मौजूद है जेको निगत नाज़ी आवाज में आ है। इन गाने जी फरमाइश असा के साइमा मीर कई है।

वैसे ये हकीकत है। ओके जी, अब्दुल्ला महर भाई असां सां गॾु मौजूद आहे। अब्दुल्ला महर भाई, तव्हां वाइटेश ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कयो पिया, सो मोहबतूं आहिनि सोणे भाजू। उन खां अलावा असां सां गॾु आहे, मतलबी माण्हू खां उहो खुलियो दुश्मन भलो, छो जो अंदरि बंद पोश माण्हूअ खां अलाह पनाह में रखे तव्हांखे ऐं असांखे, आमीन। अलाह ॾिनो बमरो भाईअ मारे साथ फ्राम नबीदाद बमरो खां, अलाह ॾिनो भाई तव्हांजो मोहबतूं आहिनि प्रोग्राम ॿुधो पिया। और ये मेरे साथ हेलो सिद्रा मक़सूद मलाह मारे साथ जी, मक़सूद मलाह आपको खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे साथ है शोनी, कहती आप ही जान में भी आ गई आपके साथ। अच्छा सोनी प्यारी प्यारी, आप जरा अपना ख्याल रखिए।

वाह वाह वाह वाह, राजा खान भाई कहते सिस्टर बड़े वक्त में पता चल बुरे वक्त में पता चल जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया। या बिल्कुल तमाम सही गाल कही राजा भाई। बस भाई कहते अदी से जो जवाब मतलब ही वो होंदो आहे जेको पंजो कम कढ़ी पोए वरी बीहर दिसंदो ना है। ओ या गाल बिल्कुल सही जयव। उनका अलावा किशोर भाई कहते अदी मुझी ख्वाहिश आहे कराची में क्रीम तू पान खणी अच। चलो मां ईंदम त खणी ईंदम। उनका अलावा ये हमारे साथ हैं जी। आदिल कहते हैं कि जवाब मतलब ही केर आहे, मतलब जी गाल कंदो हमेशा जडे हुन जो कम हुजे त भाव भाव चवंदो आहे, कम मुकियो त सलाम भी न वठंदो आहे, ऐं सिर्फ़ फ़ाइदो ॾिसंदो आहे। हू तव्हां सां दोस्ती दिल सां कोन कंदो आहे, मतलब सां कंदो आहे। हिन लाइ तव्हां जी क़ीमत कोन्हे, हुन जो कम क़ीमती आहे। मुश्किल में न मिलंदो अव्हांखे, इहा हक़ीक़त आहे। जॾहिं तव्हां खे हुन जी ज़रूरत हुजे त बेज़ारी आहियां चवंदो आहे, पर जॾहिं हुन खे कम हुजे त राति ॿ वॻे बि फ़ोन कंदो आहे। शुक्र न कंदो आहे। तव्हां केतिरी बि महिनत कयो हुन लाइ घटि आहे, हू हमेशह वधीक घुरंदो आहे, पर पाण कॾहिं कोन ॾींदो। ऐं चौथा कूड़ो कूड़ो वॾो आहे, मतलब ही जा वाइदा आसमान ते हूंदा आहिनि पर ज़मीन ते कॾहिं न। मुंह ते मिठो दिल में कारो सिंधी चवणी आहे, मतलब ही दोस्त खुलियल दुश्मन खां बि वधीक ख़तरनाक आहे। सो मतलब ही खां बचो, असल दोस्त उहो आहे जेको बग़ैर मतलब जो पंहिंजो थिए, बग़ैर मतलब जे पंहिंजो थिए। इहा बिल्कुल हक़ीक़त जी ॻाल्हि कई तव्हां। सफ़ा वीआईपी वीआईपी पॉइंट तव्हां असांजे साम्हूं रखिया। अॼु खां पोइ असांखे ख़बर पइजी त मतलब ही कहिड़ा आहे। अच्छा दीदार अली बिरोही भाभी सां गॾु मौजूद आहे, केती आ गया जी, खुश आमदीद। ऐं जेके जेके माण्हू डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कनि पिया, उहे ॿुधाइनि बाबा त असां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाए करे सोणा थी विया आहियूं। ऐं सोणा कीअं न थियो बाबा, छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजी ख़ूबसूरती खे वधाईंदी आहे। ऐं सिर्फ़ ॿ रातूं तव्हां इस्तेमालु कंदा ऐं ॾिसंदा पाण खे। पाण खे ॾिसंदा त सफ़ा ईअं सोणा चिकना ऐं सफ़ा चिमकंदा वतंदव। सो मर्द मायूं सभी इस्तेमालु कनि पिया डी स्किन ब्यूटी क्रीम। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे जनाब इहो वाइटमिन ई बीट्स फार्मुलेशन सां जेको आहे न तयार थियल आहे। सो तव्हां लाज़मी हिन खे ट्राए करे जो नाइट क्रीम आहे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि इस्तेमालु करे ॾिसणो आहे। सो इहे ॿई चीज़ूं तव्हां साथ में लॻायो, ॾिसंदा तव्हां त तव्हांखे केॾो ज़बरदस्त जेको आहे न रिज़ल्ट मिली रहियो आहे। सो तव्हां इस्तेमालु कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम, नथी मिले त पोइ तव्हां डायल कयो 03 15 7990595।

वाह वाह वाह, जो गाना बुधो सी निगत नाजी आवाज में बो गानो असि लिस्ट में मौजूद आहे जेको आहे जनाब खुदा और मोहब्बत ओ एस जी। कल हिकड़ी अदे के चयो सी हलाईंदासी सो वो कल अजो आहे साल आयो आहे गानो ऐं गानो बुधंदासीं उन खां अलावा जेको आहे सो तव्हां सां गॾु मौजूद आहे। फेसबुक वारा माण्हू पोस्ट खे लाइक शेयर कंदा वञो। अब्दुल रज़ाक भाउ सां गॾु मौजूद आहे सो मोहबतूं आहिनि प्यारे भाउ जूं। बस भाई तव्हांखे प्रोग्राम वणे पियो सो थैंक यू। मीर बेवस कहते हैं क्या खरीदा क्या बेचा आगे इस बाज़ार में जाते जाते कुछ हकीकत तो बता बाजार की। वाह जी वाह, नाइस पोएट्री। हज़ार खान जतोई भाई से सगट मौजूद आई। वालेकुम अस्सलाम हज़ार भा, खुश आयो नी सफा मजे में। अच्छा मोहम्मद अली खोसो हमारे साथ हैदराबाद से आप शो सुन रहे हैं, कहते हवा अच्छी चल रही है और आपका शो भी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू जी। और हजार भा तुम एडो वडो कॉमेंट करो है। चौथा यो टॉपिक आंसर अदी, लोग अक्सर सच्चाई इसलिए छुपाते हैं क्योंकि उन्हें किसी अंजाम का डर होता है या फिर वो अपने फायदे के लिए ऐसा करते हैं। कभी कभी तो बस मुश्किल सिचुएशन से बचने के लिए भी आजकल सच्चाई के मायने थोड़े बदल गए हैं। लोग अक्सर अपने एक्सपीरियंस और नजरिए से ही सच को देखते हैं, कभी कभी फैक्ट से ज्यादा। हाँ वैसे सही बात है, आजकल ऐसा है कि जिस इंसान की जैसी सोच है ना वो अगले इंसान को वैसे ही जज करने लग जाता है। तो यहाँ पर मतलबी वाला जिक्र जो है वो थोड़ा समझ नहीं आया। खैर बहुत अच्छा और थैंक यू सो मच आप हमारे साथ मौजूद हैं। और मोहम्मद अली खोसो भा तव्हां जो मोहब्बत वाइन प्रोग्राम ॿुधो पिया। और किशोर भाई तव्हां जो जेको गानो आहे न उहो सुभाणे हलाईंदासीं, अॼु लिस्ट जेका उहा सफ़ा फुल थी वई आहे, गाना हारजनि पिया सुभाणे तव्हां अचिजो।

अच्छा, ये इमरान अली बिरोही भाई हमारे साथ कहते हैं कि आजजी जिनका हुनर इखलास जिनकी शान है उनकी सूरत देखकर दिल पा रहा इत्मीनान है। दिलों को फतह करना तो कोई उनसे सीखे, सुबह खामोश है पर हर नजर में एहतराम है। ओके जी इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से मोहम्मद हारून संदीलो हैं, मोरो से आपने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया। और अदी अला डिनो न इमाम डिनो बमरो, ओके ओके इमाम डिनो बमरो भाषा से गढ़ मौजूद आए सो मोहब्बतों प्यारे सोने भाजू ज्वेलरी का खालिक लाश आ रही, मतलब यू हुआ है जो कम निकरण का गुम थी वने। ओ या गाल अच्छा ये मौजूदी वालेकुम असलाम शहबाज जमाली नवाब शाह से तवा सा ज्वाइन कर सो मोहब्बतों प्यारे भाजू आई अगर तवा भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर पाया तो बाबा सुठी गाल है, इस्तेमाल करना रहो। अगर न पया कर इस्तेमाल तो बाबा जल्दी इस्तेमाल कर स्टार्ट कर छो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हाँ तवा के एरिया में भी अवेलेबल थे चाहे थी उन लाइ तवा के डायल करो है 03-1579-0595। अच्छा दर्द दिल कहती है कि चंदा कहीं ना कहीं हम भी मतलबी हो जाते हैं, हम सब मतलबी हैं देखा जाए तो। ओके जी बहुत बढ़िया। और इसके साथ साथ तुम्हारे साथ मौजूद दीदी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और हैप्पी संडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ड आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान, आप कैसी हैं डियर स्वीटी? अपने पराए सब मतलबी हैं। अगर लोगों को लगता है उन्होंने हमारे साथ जो कुछ किया है वो अच्छा था तो अल्लाह करे वो अच्छा पलट कर उनकी तरफ भी जाए। आमीन आमीन इंशाल्लाह जरूर जाएगा। और कहती हैं सलाम टू माई स्वीट हार्ट मोम बाची आपी कायनात और सब सुनने वाली लड़कियों को। चलिए जी बहुत बढ़िया, आप हमारे साथ ही फजीला सिंधी आपको वेलकम करते हैं। सैडी सॉन्ग जो लोग फरमाइश करते हैं वो कोशिश में ये होती है कि उनको लास्ट में वो सेट किया जाए ताकि प्रोग्राम का जो टेम्पो है ना वो स्टार्टिंग में ना टूट जाए, तो इसी वजह से बस जो सैडी वाले गाने होते हैं वो थोड़ा लास्ट में लगा ले। तो सैडी नहीं इनको कह सकते हैं, इनको थोड़ा मतलब जो ना लाइट कह सकते हैं। और अनवर भाई कहते हैं टॉपिक ऐसे जब आप पर कोई बुरा वक्त आता है या आपको उनकी मदद की जरूरत होती है तो उनके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना तैयार होता है, वो आपका साथ देने के लिए अचानक बहुत बिजी हो जाते हैं। ओ या गल। और नाजिक अली हमारे साथ कहते हेल्प तुझी लई गुड शो, थैंक यू नाजिक। अच्छा अलीजा भी हमारा शो सुन रही है, बहुत शुक्रिया अलीजा। अच्छा आशिक खास केली भाई हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम आशिक खास केली भाई। अच्छा ॾिसो हाणे लख ॾेई करे अगरि बिना मतिलब वारा माण्हू खपनि त पोइ बिना मतिलब वारा त थिया ई न नी छो त हुननि लख वरिता आहिनि। समझो ॻाल्हि खे सही आहे।

की जी, जिन्हें हमसे मिलना गवारा ही नहीं, हमसे मिला ना करे, ये लाइनें इस सॉन्ग की मतलबी लोगों के लिए है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी लाइनें हैं वैसे। और इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेने का वक्त भी हुआ चाहता है। सो मुझे लगा था ए मंसारी आप सो चुके हैं। चले कोई बात नहीं, आप हमारे साथ साथ मौजूद हैं। और वो तमाम लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया जिन लोग हमारे साथ मौजूद रहे, प्रोग्राम में पूरा साथ दिया, प्रोग्राम में पूरे पूरे मौजूद रहे। आप लोगों का इनौशाला शुक्रिया। और कहीं कोई गलती हो गई हो तो मैं माजरत ख्वाह हूँ, कोई ऐसा लफ्ज़ बोल दिया हो जो आपको अच्छा ना लगा हो तो उसके लिए माजरत। पर इंशाल्लाह तमाम से मुलाकात मुझे सुभाणे थियण वारी आहे। सो मोकलाणी नाहे बाबू सन सलामत सलामत, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: कायम करण जी कोशिश कर। सुरसमा वारी वफाकी वजीर अताउल्ला तारड़ चयो आहे त समूरी दुनिया क़बूल कयो त पाकिस्तान अमुन लाइ किरदार अदा कयो। अॼु क़ौमी झंडे जी इज़त आहे, मैशत बि दुरुस्त रस्ते ते गामज़न आहे। जिते मुल्क जी इज़त जी ॻाल्हि हुजे, उते पंहिंजी ज़ात जी इज़त महसूस करणु घुर्जे। वफाकी वज़ीर क़ौमी असेंबली में बजट सेशन खे ख़िताब कंदे चयो त बजट ते तनक़ीद ऐं एतिजाज अपोज़िशन जो हक़ आहे, पर हाकारी क़दमनि जी वाखाण थियणु घुर्जे। समूरनि शोबनि सां मुशावरत बाद बजट तयार कई वई, हर तबके खे फ़ाइदो पहुचायो वियो। पीटीआई वारनि आईएमएफ खे ख़त लिखिया त पाकिस्तान खे कर्ज़ न ॾिनो वञे। आईएमएफ खे लिखियल ख़त तारीख़ जो हिसो आहिनि। शहबाज शरीफ ॾींहुं राति महिनत न करे हा त मुल्क दिवालो थी चुको हुजे हा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ॿीहर अपोज़िशन खे मिसाक जमहूरियत जी आछ कई, काश अव्हां उन वक़्त ई मिसाक जमहूरियत वारी आछ मञो हा। रतदुरबर सां हथियारबंदनि जी मोटरसाइकिल सवारनि ते फायरिंग, बजड़ा मारिजी विया। घोट मीर मोहम्मद जलपाणी लाड़े वटि हथियारबंदनि ॿिन्हिनि खे गोलियूं हणी क़तल करे छॾियो। मक़तूलनि जी 45 साल लालू जोयो ऐं 55 साल राजा जोयो तौर सुञाणप, लाश अस्पताल मुंतकिल। वारसनि जो चवण आहे त जतोई बिरादरी जे हथियारबंदनि नौजवान खे क़तल कयो आहे। अगबसर बिरादरी जे हिक अहलकार खे क़तल कयो वियो हो। सेवण में दरगाह हज़रत लाल शहबाज़ कलंदर जो सीसीटीवी ऑपरेटर कराची में फुर दौरान मज़म्मत ते क़तल। कराची जे सोराब गोठ वारे इलाक़े में हथियारबंदनि नौजवान शाहिद सोलंगी खे फुर मज़म्मत ते गोलियूं हणी क़तल करे छॾियो। इतला ते घर में रोज़राड़ो मची पियो। कुंडरी वेझो अधड़ो शख़्स जो अंब जे वण मां फाहु लॻल लाश हथ। सोरहां वाटर वर्ड सिखू कूलीअ जो वण मां फाहु लॻल लाश हथ कयो वियो। इतलाह ते पुलिस वाके वारे हंधि पहुची लाश खे अस्पताल मुंतकिल कयो। पुट किरशन कुली जो चवण आहे त वालद खे गुज़िरियल ॾींहुं नशो करण खां मना कयो त हुन कावड़ जी आबकात कयो। पीर जो गोठ में शहरनि जो वधंदड़ बदमनी ख़िलाफ़ थाणे अॻियां धरणो, नारेबाज़ी। शहरनि चयो त पीर जो गोठ ऐं भर पासे में बदमनी वधण सां माण्हू गैर महफ़ूज़ आहिनि। क़तल ऐं फुर जा वाकिया मामूल बणिजी विया आहिनि। हुकूमत अमन बहाल कराए। सिंध में गर्मी मथां वरी बिजली जी लोड शेडिंग आवाम लाइ अज़ाब करे छॾियो। मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा। बीरपुर माथुर जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जे रहवासियुनि जो बिजलीअ जी बंदिश ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो। सिजावत जुड़ण जो में बिजली जी मेन लाइन जूं तारूं चोरी थियण ऐं बिजली जी बंदिश ख़िलाफ़ शहरनि जो धरणो। उड़ेलाल में बिजली जी ड्रिघी लोड शेडिंग ऐं वापदा इंतज़ामिया जे नाजाइज़नि ख़िलाफ़ शहरनि जो एहतजाज। शहरनि ऐं वापारियुनि बिजली जी दफ़ाज़ू लोड शेडिंग ख़िलाफ़ स्टेशन रोड बंदि करे छॾियो। शहरनि चयो त बिजलीअ जी बंदिश सबबि पीअण जे पाणी जो बहरान पैदा थी वियो आहे। कारोबार बि मुतासिर थी रहियो आहे। बिना देर बिजली जी डिघी लोड शेडिंग जो ख़ात्मो आणे शहरनि खे अज़ाब खां बचायो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: GAFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।
5: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331252576।
6: जी हा, 2315525786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

आसमान झुकाव ब्लेजर नहायत ही मोहब्बत ही मानो साईं मिसार खोलो साहब जी नाम पुरवकार तकरीब में मौजूद आई मां पंहिंजे दिल जे गहराइयुनि सां खेनि भलीकार चवां थो। हज़ूर रियाना लगारी साहिबा

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चवैत आजाद कश्मीर में जारी बेचैनी पाकिस्तान के साख के नुकसान दे रही है। अड़ी सूरत हाल दुश्मन अंसर भारत और इसराइल गठजोड़ के पैंजा मकसद हासिल करण में गैर जरूरी मौको फराहम कर रही है। जारी कल बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी चो तीन वक्त पूरी दुनिया जो ध्यान पाकिस्तान तरफ है। इस्लामाबाद मुआदे से सयू पाकिस्तान लाए तारीखी लम्हो हों सियासी शिकायतन इख्तिलाफन जो हल जमहूरी आइनी और पुरमन जरियन में करण घुर्जे। पार्लियामान और सियासी अमल अड़ा मसला हल कर मुनासिब फोर्म्स आन अस हर मसले जो सियासी हल कर पुरजम आयू। इलेक्शन कमीशन का वक्त का अग चूंड शेड्यूल वापस करण जो मुतालबो कर चुका आयो। इल्तवा हेठ शिकायतन जजरे लाए थ्रूट एंड रिकन्सिलेशन कमीशन कायम करण की कोशिश कंदी। सुध समा वे वफाकी वजीर अताउल्ला तारण चवैद समूरी दुनिया कबूल कर पाकिस्तान अमुंडा किरदार अदा कर अज कौमी झंडे की इज्जत है। मैशत भी दुरुस्त रस्ते से गामजन है। जिते मुल्क की इज्जत की गाल हुए उते पैंजी जात की इज्जत महसूस करण घुर्जे। वफाकी वजीर कौमी असेंबली में बजट सेशन के खिताब कन्दे बजट से तनकीद एतजाज अपोजिशन जो हक है पर हाकारी कदम की वाखाण थे घुर्जे। समूरन शोबन से मुशावरत बाद बजट तैयार कई वही हर तबके के फायद पहुंचाया वो। पीटीआई वारन आईएमएफ के खत लिखा तो पाकिस्तान के कर्ज न डो वे आईएमएफ के लिखल खत तारीख जो हिस्सो आन। शहबाज शरीफ डी रात मेहनत न करे हा तो मुल्क दिवालो थी चुको हो हा। वजीर आजम शहबाज शरीफ बीहर अपोजिशन के मिसाक जमहूरियत की आज कई काश अवा उन वक्त ई मिसाक जमहूरियत वारी आज मनो हा। नायब वजीर आजम मिसाक डार जो मिस्र और तुर्क परडेही वजीर से फोन से राबत खिते के तब्दील सूरत हाल के ख्याल की दे वट कई वही। परडेही तर्जमान मौजूद गाल बोल दौरान अमरीका ईरान विच में मफामत लाए हाकारी अकबराई की आजकारी अकबराई से अमन रस्तों खुलने की उम्मीद जाहिर कई। अगवाणों अकबराई के हवाले से राबते में रहने इतफाक़।

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ, अब बालों से 100% खुश।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, FM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
6: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331252576।
6: जी हा, 2315525786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: वफाकी हुकूमत जो बजट 2026-27 में ज़रखेज स्कीम तहत 7,50,000 नंढनि आबाद घरनि खे 300 अरब रुपयनि जा बिना व्याज कर्ज फराहम करण जो ऐलान। बजट दस्तावेज़ मूजिब ज़री मशीनरीअ लाइ 5 अरब रुपया सब्सिडी लाइ मुख़्तस कया विया। 12 एकड़ खां घटि ज़मीन मालिकनि खे 1500 रुपया फ़ी एकड़ सब्सिडी फराहम कई वेंदी। भाण जा अघ घटि रखण लाइ भाण कंपनियुनि खे 20 अरब रुपयनि जो पैकेज ॾिनो वेंदो। मौसमियाती तब्दीलीअ खे मुंहुं ॾियण ऐं ज़री शोबे खे नुक़सान खां बचाइण लाइ आलमी बैंक जी मदद सां 20 करोड़ डॉलर मुख़्तस कया विया। सुद समा वारे फाकी वज़ीर अता ताराड़ चयो आहे त समूरी दुनिया क़बूल कयो त पाकिस्तान अमुन लाइ किरदार अदा कयो आहे। अॼु क़ौमी झंडे जी इज़त आहे, मैशत बि दुरुस्त रस्ते ते गामज़न आहे। जिते मुल्क जी इज़त जी ॻाल्हि हुजे त उते पंहिंजी ज़ात जी इज़त महसूस करणु घुर्जे। वफ़ाकी वज़ीर क़ौमी असेंबली में बजट सेशन खे ख़िताब कंदे वधीक चयो त बजट ते तनक़ीद ऐं एहतजाज अपोज़ीशन जो हक़ आहे, पर हाकारी क़दमनि जी वाखाण थियणु घुर्जे। समूरनि शोबनि सां मुशावरत बाद बजट तयार कई वई, हर तबिके खे फ़ाइदो पहुचायो वियो। पीटीआई वारनि आईएमएफ खे ख़त लिखिया त पाकिस्तान खे कर्ज़ न ॾिनो वञे। आईएमएफ खे लिखियल ख़त तारीख़ जो हिसो आहिनि। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो कश्मीर में जारी बेचैनी पाकिस्तान जी साख खे नुक़सान ॾेई रही आहे। अहिड़ी सूरत हाल दुश्मन अंसर भारत ऐं इसराइल गठजोड़ खे पंहिंजा मक़सद हासिल करण में गैर ज़रूरी मौक़ो फराहम करे रही आहे। जारी कयल बयान में बिलावल भुट्टो चयो त हिन वक़्तु पूरी दुनिया जो ध्यानु पाकिस्तान तरफ़ आहे। इस्लामाबाद मुआदे ते सयूं पाकिस्तान लाइ तारीख़ी लम्हो हूंदो। सियासी शिकायतनि ऐं इख़्तिलाफ़नि जो हल जमहूरी आइनी ऐं पुरमन ज़रियनि मां कढणु घुर्जे। पार्लियामान ऐं सियासी अमल अहिड़ा मसला हल करण लाइ मुनासिब फॉर्म्स आहिनि। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो मिस्र ऐं तुर्क परडेही वज़ीरनि सां फोन ते राब्तो, खिते जी तब्दील थींदड़ सूरत हाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। परडेही तर्जुमान मूजिब ॻाल्हि ॿोल दौरान अमरीका ऐं ईरान विच में मुफ़ाहमत लाइ हाकारी अगभराई जी आचियां। आकारी अगबराई सां खिते में जटादार अमन जो रस्तो खुलण जी उमेद ज़ाहिर थी आहे। अगवाणनि जो थींदड़ अगभराई जे हवाले सां राब्ते में रहण ते इतफ़ाक़। कतर जे वफ़द पारां तहरान जो दौरो, ईरानी मीडिया मूजिब कतरी वफ़द ईरानी अख़्तियारनि सां गॾिजी इसराइल सां जंग जी ख़ात्मे ते ताज़ी अगभराई जो जाइज़ो वरितो। दौरे जा वधीक तफ़सील साम्हूं न अची सघिया। ईरान ऐं अमरीका जंग जी ख़ात्मे लाइ मुआदे ते सयूं अॼु थींदियूं या न, अमरीका ऐं ईरान जे बयाननि सां सूरतहाल वाज़े न थी सघी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवणो हो त ईरान सां अमन मुआदे ते सयूं अॼु थींदियूं। मुआदे ते सयूं थींदे ई खुली वेंदो। सकून थियण बाद मुनासिब वक़्त ते एटमी मवाद जी बाक़ियात बि हासिल करे वठंदासीं। ईरानी फ़ौज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जे अॼु अमन मुआदे ते सयन वारी दावा रद्द करे छॾी। ईरानी पासदारनि इनकलाब फोर्स जो चवण हो त कंहिं बि मुआदे ते सयूं न करण बाबति आगाह करे चुका आहियूं। सदर ट्रंप सही वारी तकरीब पंहिंजी सालगिरह जे करे 14 जून ते करण चाहे थो। ट्रंप इन मौके खे अलामती अहमियत ॾेई पंहिंजी ज़ाती मशहूरीअ जो प्रोग्राम बणाए रहियो आहे।

0: रतो देरो वेझो हथियार बंदनि जी मोटरसाइकिल सवारनि ते फायरिंग, ॿ ॼणा मारिजी विया। ॻोठ मीर मोहम्मद जलबा वटि हथियार बंदनि ॿिनि ॼणनि खे गोल कयो। मक़तूलनि जे 45 वरनि जे लालू जोयो ऐं 55 सालनि जे राजा जोयो तौर सुञाणप। लाश इस्पताल मुंतकिल। वारसनि जो चवण आहे त जतोई बिरादरी जे हथियार बंदनि नौजवान खे क़तल कयो आहे, अॻु बि संदसि बिरादरी जे हिकु अहलकार खे क़तल कयो वियो हो। सेवण में दरगाह हज़रत लाल शाहबाज कलंदर जो सीसीटीवी ऑपरेटर कराचीअ में फुर दौरान मज़ामत क़तल। कराची जे सोराब ॻोठ वारे इलाइक़े में हथियारबंदनि नौजवान शाहिद सोलंगीअ खे फुर मज़ामत गोलियूं हणी क़तल कयो। इतलाउ ते घर में रोजराड़ो मची वियो। वगण ऐं नओं देरो वेझो टे नींगर शाख ऐं दादू कैनाल में वेहंजंदे ॿुॾी विया, हिक खे बचायो वियो। वगण वेझो ॻोठ खरी जा रहवासी नींगर राबेल ऐं इश्फाक मुगेरी गठ शाख में वेहंजंदे ॿुॾी विया। ॻोठाणनि 13 सालनि जे इश्फाक खे बचाए वरितो। 12 वरनि जे राबेल जो लाश हथ। नओं देरो वेझो बि 6 सालनि जो मासूम नींगर दादू कैनाल में ॿुॾी वियो। ॻोठ साबुल जोड़े जो में मासूम नींगर फरहान पुटु एजाज शेख दादू कैनाल में ॿुॾी वियो। गोला चारी। पीर जो ॻोठ में शहरनि जो वधंदड़ बदमनी ख़िलाफ़ थाणे आॾो धरणो नारेबाज़ी। शहरनि जो चवण हो त पीर जो ॻोठ ऐं भरपासे में बदमनी वधण सां माण्हू गैर महफ़ूज़ आहिनि। क़तल ऐं फुर जा वाकिया रोज़ जो मामूल बणिजी विया आहिनि। हुकूमत अमुन बहाल कराए। सिंध में गर्मीअ मथां वरी बिजलीअ जी लोडशेडिंग अवाम लाइ अज़ाब करे छॾियो। मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा। हैदराबाद में मुस्लिम लीग फे पारां बिजली जी डिघी लोडशेडिंग ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। मीरपुर माथिलो जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जे रहवासियुनि जो बि बिजली बंदिश ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो। सजावल जोड़े जो में बिजली जी मेन लाइन जूं तारूं चोरी थियण ऐं बिजलीअ जी बंदिश ख़िलाफ़ शहरनि धरणो हयो। मंज़ूराबाद में मांझनि जे शहरनि पारां बिजली जी डिघी लोडशेडिंग ख़िलाफ़ रैली कढी वई। उॾेरो लाल में बि बिजली जी डिघी लोडशेडिंग ऐं वापडा इंतिज़ामिया जे नाजाइज़नि ख़िलाफ़ शहरनि जो एहतजाज। शहरनि ऐं वापारियुनि बिजली जी अथराद लोडशेडिंग ख़िलाफ़ स्टेशन रोड बंदि करे छॾियो।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
1: जी हा, 2315525786।
0: GAFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
4: सुनते रहो GFM 90.4।

Assalamualaikum. Good evening, all the listeners. Program आपका अपना Sports Roundup Radio Channel, आपका अपना GAFM Radio Network और मैं आपका अपना राणा अशफाक हाजिर खिदमत हूँ. हर संडे की शाम होती है हमारी मुलाकात जनाब. बहुत कुछ हो रहा है. ये एक भरपूर हफ्ता है. फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप का आगाज हो गया. बड़े इंटरेस्टिंग और जबरदस्त मैचेस जारी हैं. विमेन वर्ल्ड कप जारी है क्रिकेट का. आज शाम मुकाबला है जनाब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान. अब से कोई एक घंटा और 13 मिनट के बाद दैट विल बी प्लेड इन बर्मिंघम. पाकिस्तान और इंडिया की विमेन टीमों का क्या स्टेटस है इस वक्त, क्या सूरत हाल है, उस पर बात करेंगे. इसके अलावा कुछ जो मुकाबले मजीद हो चुके हैं विमेन के, उनका स्कोर कार्ड आपसे शेयर करेंगे. न्यूजीलैंड वर्सेज वेस्ट इंडीज वुमेन, जिसमें वेस्ट इंडीज की वुमेन की टीम जो है जीती मुकाबला 7 विकेट से 46 रन जीती है. बांग्लादेश की वुमेन को अभी 46 रन चाहिए 42 गेंदों पर. एक इंटरेस्टिंग मुकाबला उनका जारी है नेदरलैंड की औरतों के साथ. अच्छा जनाब, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के दरमियान इस वक्त तीसरा ओडीआई जारी है मीरपुर ढाका में. देखने की उसमें क्या सूरत बनती है, उसकी ताजा तरीन अपडेट भी आपको देंगे. जो दूसरा T20 मैच खेला गया, लॉट इज हैपनिंग, लॉट इज गोइंग ऑन. आपको बता दूं कि इस वक्त बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया के मैच में क्या जनाब, जी जनाब, तो बांग्लादेश की टीम ने पहले बल्लेबाजी की है और 274 रन उन्होंने स्कोर किए अपने अलॉटेड ओवर्स में, जिसमें सोमया सरकार, बोल्ड पार फ्लैट उन्होंने 2 रन स्कोर किए. तंजीर हसन 19 रन बनाए, उन्होंने कॉट किया उनको, मेरिडिथ ने कैच किया. रैन शौकी गेंद पे 19 रन 20 गेंद बनाए, 2 चौके और 1 छक्का लगाया. नजम हुसैन शांतो जो कि टीम के कैप्टन है, उनको बोल्ड किया रैन शॉ ने, 50 गेंदों 20 रन बनाए. लिटन दास नॉट आउट रहे, 58 रन बनाए 78 गेंदों पर. तौहीद हिरदौई ने 88 गेंदों पर 83 रन बनाए, 8 चौके लगाए. कैच किया कैरी ने डॉलविश की गेंद पे. वो सत्रिक हुसैन ने 56 रन बनाए नॉट आउट, 51 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्का लगाया. मेनी हसन 3 रन बना सके, कॉट ग्रीन बोल्ड पार्टलेट एक्स्ट्राज रहे 29. इस तरफ 50 ओवरों में 5 विकेट पे 274 रन बनाए बांग्लादेश ने, जिसमें सौम्या सरकार ने पहले सिर्फ 2 था, फिर तंजीम हसन आउट 53 पे, 30 विकेट 61 पे. शांत आउट हुए 84 विकेट 53 पे, फिर 5वीं विकेट जो है 34 विकेट 246 पे, 5वीं 261 पे गिरी. बार्टलेट ने 8 ओवर किए 47 रन दिए, 2 खिलाड़ी आउट किए. रेले मेरिडिथ ने 7 ओवर में 41 रन दिए, कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया. डॉर्विश ने 8 ओवर 55 रन 1 विकेट. कैमरॉन ग्रीन 6 ओवर 18 रन दिए, 2 मेडन किए. मैट रेनशॉ ने 9 ओवर किए 44 रन देकर 2 आउट किए. एडम जाम्पा 10 ओवर 48 रन कोई विकेट नहीं, जबकि लवस शेन ने 2 ओवर किए 10 रन दिए और कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया. तक अपने टारगेट का तआक्कुब कर रहा है जी, और 4 विकेट पे 187 रन उन्होंने बना लिए हैं और जो है वो अच्छे खासे अंदाज में वो बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद भी अभी 17 ओवर का खेल बाकी है, 33वां ओवर है और उन्हें अब 87 ही रन की और जरूरत है 88 की. रैन शॉ बोल्ड हुए, शरीफुल इस्लाम की गेंद पे कोई रन नहीं बना सके. एलेक्स कैरी, कॉट सरकार, बोल्ड, तस्कीन 8 रन बनाए 16 गेंदों पे. लेविस शेन ने 29 रन बनाए 45 गेंदों पर, 1 चौका लगाया. उनका कैच किया नूरुल हसन ने शरीफुल इस्लाम की गेंद पे. कैमरॉन ग्रीन इस वक्त नॉट आउट में 20 रन पे 26 गेंद खेलकर 1 चौका 1 छक्का लगाया है. एक्स्ट्रा है इस वक्त 5 आने वाले खिलाड़ियों में पीक हैं, बार्टलेट हैं, बेन डॉर्मिश हैं, एडम जाम्पा हैं और मेरिडिथ हैं. जहां तक अब तक बंगाली बॉलर्स का ताल्लुक है, तस्कीन अहमद 6 ओवर 33 रन 1 विकेट, मुस्तफिजुर 5 ओवर 41 रन कोई विकेट नहीं, महंगे रहे हैं. शरीफुल इस्लाम 6 ओवर 35 रन और 3 विकेट पहली उन्होंने आखिरी दू. हसन 6 ओवर 1 मिनट 23 रन, जबकि ट्रेवर्स हेड ने 6.2 ओवर अब तक किए 34 रन कोई विकेट नहीं, और मुसद्दिक हुसैन ने 3 ओवर में अब तक 18 रन दिए हैं और उनको भी विकेट नहीं मिली है. ये है सुडल बांग्लादेश वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, जो करंटली मुकाबला जारी है मीरपुर ढाका में. उसके अलावा जनाब जो मुकाबला जारी है इस वक्त वुमेन का, नेदरलैंड वुमेन वर्सेज बांग्लादेश वुमेन, बड़े इंटरेस्टिंग मोड पे वो मुकाबला है.
और ये मुकाबला खेला जा रहा है बर्मिंगम में और 139 रन बनाए नेदरलैंड की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर। बांग्लादेश ने 14 ओवरों में 4 विकेट पे 101 रन बना रखे हैं। 39 रन चाहिए, 36 गेंदें बाकी हैं और इनके पास 6 विकेट बाकी हैं। स्कोर कार्ड में अभी आपके साथ शेयर करता हूं जनाब इस वर्ल्ड कप वुमेन इम्पोर्टेंट गेम की। बांग्लादेश की खवातीन ने पहले बैटिंग की जिसमें पीटर साइजर ने, इनफैक्ट नेदरलैंड की वुमेन ने पहले बैटिंग की, आई बेग योर पार्डन। साइजर ने स्कोर किए 16 रन, 13 गेंदों पर 2 चौके। उसके अलावा मोल किनबर ने 11 रन स्कोर किए, 7 गेंदों पर 2 चौके। बेबेटी डी ने 50 रन की इनिंग्स खेली, 45 गेंदों पर 5 चौके लगाए और बेबेटी डी टीम की कैप्टन भी है और ये रन आउट हुई। उसके अलावा केल्स ने 4 रन स्कोर किए 5 गेंदों पर। रॉबिन रिजिक ने 13 रन स्कोर किए 14 गेंदों पर, एक चौका लगाया। इसके अलावा खुराना ने 1 रन बनाया 4 गेंदों पर। ओवर डिच ने 9 रन बनाए 9 गेंदों पर। आरिस जेवेलिंग ने 13 रन स्कोर किए 11 गेंदों पर और वो नॉट आउट रही। कैरोलाइन डीलेंगे ने 1 रन स्कोर किया 4 गेंदों पर, जबकि सिल्वर ने 10 रन स्कोर किया 8 गेंदों पर, एक चौका लगाया और वो नॉट आउट रही और एक्स्ट्राज रहे थे 11। इस तरह 8 विकेट के नुकसान पर 139 रन स्कोर किए 20 ओवर्स में। यहां पर नेदरलैंड की औरतों की टीम ने पहली विकेट गिरी थी 14 पर, दूसरी विकेट गिरी 36 पे, तीसरी विकेट 47 पे, चौथी 71, पांचवी 76, छठी विकेट 113, उसके बाद सातवीं विकेट जो है वो 115 और आठवीं विकेट 116 पे गिरी थी। बांग्लादेश के लिए फरीहा ने 4 ओवर किए 32 रन 1 विकेट। मारूफा अख्तर ने 4 ओवर किए 31 रन 2 विकेट ली। अख्तर मेंगला ने 4 ओवर किए 39 रन लेकर एक खिलाड़ी आउट किया। राबिया खान ने 4 ओवर 26 रन 1 विकेट और मोनी ने 4 ओवर में 17 रन देकर एक खिलाड़ी आउट किया। जवाब में बांग्लादेश की बैटिंग अभी जैसा कि मैंने बताया जारी है। उनके लिए जवेरिया फिरदौस ने 50 रन की इनिंग्स खेली, 33 गेंदों पर 7 चौके और 2 छक्के लगाकर। जिलारा एक्टर ने 26 रन स्कोर किए 23 गेंदों पर, एक चौका लगाया। सुल्ताना कोई रन न बना सकी टीम की कैप्टन, उन्होंने एक ही गेंद का सामना किया। सोबाना मास्टरी ने 4 रन स्कोर किए 10 गेंदों पर, वो रन आउट हुई हैं। शर्मिन इस वक्त 13 रन पे नॉट आउट हैं और शौराना इस वक्त 6 रन पे नॉट आउट हैं। एक्स्ट्राज हैं 3 और 4 विकेट पे स्कोर है 102 14.1 ओवर का खेल हुआ। पहली विकेट 67, दूसरी 67, उसके अलावा तीसरी विकेट 79 और चौथी विकेट 85 पे गिरी है बांग्लादेश की खवातीन की टीम की। ज्वेलिंग ने 2 ओवर किए हैं 13 रन दिए हैं, कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया है। हितार ने 3 ओवर किए 16 रन दिए, कोई विकेट नहीं। रुबीना ने 1 ओवर में 9 रन दिए हैं। सिल्वर ने 2 ओवर में 18 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया है। इसके अलावा वेंडर वांग ने 2 ओवर में 20 रन दिए। कैरोलाइना डिलांगे सबसे कामयाब बॉलर है अब तक की, 3 ओवर 21 रन और 2 खिलाड़ी उन्होंने आउट कर रखे हैं, जबकि 1.4 ओवरों में 6 रन देकर कोई विकेट नहीं मिली है ओवर डिजिट को। तो ये है सूरत हाल और अभी भी बांग्लादेश की टीम को 32 गेंदों में 35 रन की जरूरत है इस ऑल इम्पोर्टेंट वुमेन वर्ल्ड कप के मुकाबले में। तो क्रिकेट का खेल न सिर्फ अब मर्दों में बहुत मकबूल है बल्कि खवातीन में भी जबरदस्त अंदाज में इसे फॉलो किया जाता है और वो खवातीन का T20 और वनडे दोनों वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं अंडर द बैनर ऑफ ICC और जबरदस्त अंदाज में इन्हें सेलिब्रेट भी किया जाता है। जो चौथा मुकाबला था वर्ल्ड कप का जो कल रात खेला गया था साउथहैम्पटन में, वहां न्यूजीलैंड की टीम ने 162 रन बनाए थे 6 विकेट पे और वेस्ट इंडीज की टीम ने 3 विकेट पे 163 रन बनाकर टारगेट अपने नाम करके मैच अपने नाम कर लिया था। और आज जो दूसरा मुकाबला है, इसके बाद जो मुकाबला होगा, जो इस वक्त बांग्लादेश और नेदरलैंड का मुकाबला है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, प्रोग्राम के अगले से हम उसका जिक्र करेंगे। यहां थोड़ा न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के हवाले से बात कर लेते हैं।
न्यूजीलैंड की टीम ने जब 162 रन बनाए तो उसमें गेज ने 39 रन बनाए थे 29 गेंदों पर, 8 चौके लगाए, वो अच्छे क्रिकेटर हैं। फिलीमर ने 8 रन बनाए थे 11 गेंदों पे। टीम की कैप्टन जो है मेलिकर, उन्होंने 5 रन स्कोर किए 6 गेंदों पर। सोफिया डिवाइन ने 22 रन बनाए थे 15 गेंदों पर, 3 चौके लगाए थे। 40 रन स्कोर किए थे हॉलीडे ने 32 गेंदों पर, 5 चौके लगाए। मैडी ग्रीन ने 35 रन बनाए 22 गेंदों पर, 4 चौके और 1 छक्का। शाफ ने 5 रन बनाए 4 गेंदों पर, 2 रन बनाए थे जेस्कर ने 2 ही गेंदे के लिए एक्स्ट्रा से 6 और 6 विकेट पे 162 रन न्यूजीलैंड ने स्कोर किए थे। वेस्ट इंडीज के लिए 9 रन देकर एक ओवर किया था जायदा ने, उसके अलावा हेक्टर ने एक ओवर में 9 रन दिए थे। 4 ओवर किए थे मैथ्यूज ने 31 रन देकर, एक खिलाड़ी आउट किया। डॉटिन ने 2 ओवर किए 22 रन से 1 विकेट। आलिया अलाइन ने 4 ओवर किए 27 रन, 4 विकेट ने पिकअप द बॉलर रही। एफी फ्लेचर 4 ओवर 26 रन, कोई विकेट नहीं। उसके अलावा रामहर्क ने 3 ओवर में 25 रन दिए और जोसेफ ने 1 ओवर में 13 रन दिए। जहां तक बैटिंग का ताल्लुक है, वेस्ट इंडीज के लिए कायना जोसेफ रन आउट हुई 2 रन बनाकर 4 गेंदों पर। हेली मैथ्यूज जो कि टीम की कैप्टन है 48 रन बनाए 37 गेंदों पर, 6 चौके और 1 छक्का लगाया। इसके अलावा शेमन कैम्बल ने 90 रन नॉट आउट किए 62 गेंदों पर, 7 चौके और 3 छक्के लगाए। डरिंद्र डॉटिन ने 6 रन स्कोर किया 8 गेंदों पर, और जबकि जजारा कैरेक्स्टन नॉट आउट रही 6 रन बनाकर 8 गेंदों पर, जबकि 11 एक्स्ट्रा से वेस्ट इंडीज ने 3 विकेट पे 163 रन बनाकर 19.5 ओवरों में मैच अपने नाम कर लिया। पहली विकेट 12, दूसरी 86 और तीसरी विकेट 126 पे गिरी थी। न्यूजीलैंड के लिए मायर ने 4 ओवर में 27 रन दिए, कोई विकेट नहीं। ग्रीलिंग ने 2 ओवर किए 21 रन दिए, उनको कोई विकेट न मिली। जयशेखर ने 4 ओवर 17 रन और 2 विकेट। नैन्सी पटेल ने 2 ओवर किए 22 रन और कोई विकेट उनको न मिल सकी। मेलिकर 4 ओवर 41 रन दे गई, उनको भी कोई विकेट न मिली। और सूफिया डिवाइन ने 3.5 ओवर किए 27 रन दे गई और उनको भी कोई विकेट जो है वो हासिल नहीं हो सकी। तो ये था जो चौथा मुकाबला था वुमेन वर्ल्ड कप के सिलसिले में, जो न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की टीमों के दरमियान खेला गया। उसका हाल, बांग्लादेश की टीम अभी भी अपने टारगेट के ताकुब में है और बांग्लादेश की टीम ने 4 विकेट पे 112 रन बना लिए हैं, 26 गेंदों पर 28 रन बनाए चाहिए बर्मिंगम के मुकाम पर बांग्लादेश वुमेन को नेदरलैंड वुमेन के खिलाफ, और अभी उसके पास 6 विकेट बाकी हैं। अभी एक रन और बना है 113 बिफोर दिस मैच इज लाइव, जबकि 6:30 बजे पाकिस्तान वर्सेज इंडिया एक बहुत बड़ा वुमेन वर्ल्ड कप का टाकरा शुरू होने वाला है। उस पर बात करेंगे कि दोनों टीमों की स्ट्रेंथ इस वक्त क्या है और क्या सूरत हाल है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में इस वक्त हम आ गए हैं प्रोग्राम के पहले ब्रेक की जाने, आइए यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और ब्रेक से जब लौटेंगे वो विल टॉक अबाउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वुमेन वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच। लेट्स टेक अ ब्रेक।

0: मोरो
1: नौशहरो
0: मीरपुर खास
1: लाड़काना
0: सक्खर
1: गूंज रही है हर जगह पर
0: सिंध की आवाज़।

0: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

आना अच्छा घर चंदे होती है मेरी और आपकी मुलाकात। जी जनाब, पाकिस्तान बमुकाबला इंडिया की जो खवातीन का मुकाबला है वर्ल्ड कप में, जो कि बर्मिंघम में होने जा रहा है आज, जो कि 6:30 बजे शुरू होगा, तो टॉस में बकाया कोई 21 मिनट का वक्त बाकी है जब सिक्का उछाला जाएगा। लेट्स सी कि कौन से मुल्क की खवातीन टॉस जीतेंगी और वो क्या फैसला करेंगी। इंडिया ने जो लास्ट अपने 5 मुकाबले खेले हैं उनमें से उन्होंने 2 मुकाबले हारे हैं, 3 मुकाबले इंडिया की खवातीन जो हैं वो हारी हैं और 2 मुकाबले इनफैक्ट उन्होंने जीते हैं और आखिरी दोनों मुकाबले इंडियन वुमेन ने हारे हैं। पाकिस्तान की वुमेन टीम ने जो आखिरी 5 मुकाबले खेले उनमें से 1 मैच अबेंडन हो गया, यानी हो ही नहीं सका, 1 मैच नो रिजल्ट रहा। 2 मैच पाकिस्तान की वुमेन और 1 मुकाबला पाकिस्तान की वुमेन ने जीता, यानी पिछले 5 मैचों में पाकिस्तान वुमेन ने सिर्फ 1 मैच जीता है जबकि इंडिया की टीम ने सिर्फ 2 मुकाबले जीते हैं। यानी दोनों ही टीमों की जो हार का रेशियो है, जो हार की परसेंटेज है, वो अगर जीत से उसका मुवाजना करें तो वो कम है, हार जो है वो ज्यादा है और जीत जो है वो कम है, तो कहीं ना कहीं दोनों ही टीमें स्ट्रगल कर रही हैं। बट लेट्स सी, जिस तरह पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बहुत बड़ा मुकाबला क्रिकेट का मेंस का होता है, इसी तरह वुमेन के मुकाबले पे भी न सिर्फ दोनों मुल्कों की जो क्रिकेट लविंग ऑडियंस है, दोनों मुल्कों के जो स्पेक्टेटर्स हैं उनकी नजरें, बल्कि दुनिया भर की जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है या क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी है उसकी निगाहें होती हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, चाहे वो वुमेन का मैच हो या फिर मेंस का मुकाबला हो। जैसे कभी, अभी मैं कभी का लफ्ज यूज कर रहा हूं, जैसे कभी जब पाकिस्तान और इंडिया हॉकी वर्ल्ड कप में खेलते थे तो बहुत बड़ी ऑडियंस होती थी, बहुत बड़ी तादाद में लोग फॉलो करते थे और उस जमाने में दोनों ही मुल्कों की हॉकी टीम्स भी बड़ी मजबूत होती थी। पाकिस्तान तो 4 दफा का वर्ल्ड चैंपियन भी है। बहरहाल, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हॉकी के भी बड़े करारे, बड़े कड़ाकेदार और बड़े कांटे के मुकाबले होते थे जो कि अब नहीं रहे। दोनों ही मुल्कों की जो हॉकी है वो फेड अवे हुई है, गिरती चली गई है। वर्ल्ड कप्स में हमारे जेंट्स का या हमारे मेंस का रिकॉर्ड तो बड़ा ही पैथेटिक है। इस दफा भी वर्ल्ड कप जो हुआ उसमें हम हारे ही हैं। जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप खेला गया है उसमें इंडिया ने हमको हराया, हमारी टीम कोई खास कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकी और स्ट्रगल ही किया पाकिस्तान की टीम ने ज्यादातर। लेकिन अब देखना यह है कि क्या सूरतहाल बनेगी और यहां किस तरह से जो है वो परफॉर्म करेगी जो पाकिस्तान की वुमेन की टीम है। और वुमेन का भी वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट कोई रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी ये टीम्स हमें खुशियों का पैगाम दें और किसी न किसी तरह इंडिया की टीम को हराकर जो है वो जबरदस्त अंदाज में खेल पेश करें। अच्छी प्लेयर्स दोनों ही टीम्स के पास मौजूद हैं और दोनों ही अच्छी कारगर मुजाहरा कर सकते हैं। अभी तक जो पॉइंट टेबल है वो इंडिया और पाकिस्तान का तो आज पहला ही मुकाबला है, वो देखना होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो यकीनन अपना उन्होंने मैच जीत लिया था, उनके पास 2 पॉइंट हैं। साउथ अफ्रीका के पास कोई पॉइंट नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। ग्रुप 2 में जो हुआ है, वेस्ट इंडीज के पास 2 पॉइंट हैं, न्यूजीलैंड के पास कोई पॉइंट नहीं, स्कॉटलैंड के पास 2 पॉइंट्स हैं, इंग्लैंड वुमेन ने भी अपना मैच जीता था उनके पास भी 2 पॉइंट हैं, जबकि अभी न्यूजीलैंड, आयरलैंड और श्रीलंका की टीमों को अपना खाता खोलना है जहां तक ग्रुप 2 का ताल्लुक है। वर्ल्ड कप जो 2026 है वुमेन का, जो कि इंग्लैंड के मैदानों पर खेला जा रहा है, उसकी ये सूरत हाल है। पाकिस्तान की टीम का जो स्क्वाड है इस वर्ल्ड कप के लिए उसमें फातिमा सना इज द कैप्टन, आलिया रियाज जो कि अच्छी ऑलराउंडर हैं, आयशा जफर, दायना बेग, इमान फातिमा जो कि अच्छी बैटर हैं, गुल फिरोजा विकेट कीपर बैटर हैं, इरम जावेद जो कि मिडिल ऑर्डर बैटर हैं और लाहौर से इनका ताल्लुक है और उनके साथ कमेंट्री का भी मुझे मौका मिला था लाहौर में 2024 में, मुनीबा अली विकेट कीपर बैटर हैं, उसके अलावा संधू हैं, नाशिरा संधू इनका मेन शोबा बॉलिंग है, नतालिया परवेज ये बैटिंग ऑलराउंडर हैं, रामीन शमीन ये बॉलर हैं, सादिया इकबाल शी इज ऑल्सो बॉलर, सायरा जबीन शी इज ऑलराउंडर, तस्मिया रुबाब बॉलर हैं और टूबा हसन भी बॉलर हैं। ये हैं पाकिस्तान की 15 रुकनी स्क्वाड

0: अलावा रिचा गौच विकेट कीपर बैटर हैं, शरिंका पाटेल ऑलराउंडर हैं, अरुंधति रेड्डी बॉलर हैं, रिनाका सिंह बॉलर हैं, उसके अलावा जमाइमा रॉड्रिगस मिडिल ऑर्डर बैटर हैं, शिफाली वर्मा ओपनिंग बैटर हैं, टीपीटी शर्मा ऑलराउंडर हैं, नंदानी शर्मा बॉलर हैं, श्री शरानी बॉलर हैं और राधा यादव भी इनकी बॉलर हैं। तो ये है दोनों ही टीमों का, जहां तक स्कॉट्स का ताल्लुक है दोनों ही टीम्स के, ये स्कॉट्स है और देखते हैं कि कौन सी क्रिकेटर आज किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। फातिमा सना कैप्टन है, अच्छी क्रिकेटर है, तो देखते हैं कैसे कारकर्दगी दिखाएंगी। फिर डायना बैक पे भी काफी उम्मीदें होंगी, गुड। और फिर इंडिया के पास स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर बहुत ही अच्छी क्रिकेटर्स हैं, ऑलवेज उन्होंने परफॉर्म किया है, तो लेट्स सी के इस मुकाबले में वो कैसे परफॉर्म करें। प्रोग्राम के दूसरे ब्रेक की करीब या ब्रेक के करीब आ चुके हैं और उसके बाद बस फिर हम आपसे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में गुफ्तगू करेंगे इस ब्रेक के बाद, और 6 बजे इंशाल्लाह आपसे इजाजत ले लेंगे क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस वुमेन इंडिया का मुकाबला भी हमें कवर करना है। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बांग्लादेश के मुकाबले के हवाले से बता दूं, जो उनका नेदरलैंड के साथ इस वक्त जारी है, कि वॉच इज दी लेटेस्ट अपडेट, सोशल कहां तक पहुंची है। जनाब अभी अभी बांग्लादेश की टीम ने विनिंग रन बनाए हैं, 20वें ओवर की पहली गेंद पे 4 विकेट पे 141 रन बनाकर उन्होंने मुकाबला अपने नाम कर लिया है और इस तरह 6 विकेट से मुकाबला उन्होंने जीता, जबकि 5 गेंदें बाकी थी। शौराना 18 रन पे नॉट आउट रही, 17 गेंदों पर एक चौका लगाया और शर्मीन 37 रन पे नॉट आउट रही, 25 गेंदों पर उन्होंने 4 चौके लगाए। एक तो बांग्लादेश को 141/4 वाइल दे चेजिंग 140 इन देर अलॉटेड 20 ओवर एंड दे टुक जस्ट 19.1/4 चेज दोज रन्स डाउन। तो कांग्रेचुलेशंस टू बांग्लादेश, उन्होंने अपना अकाउंट ओपन कर लिया है इस वर्ल्ड कप में, जबरदस्त अंदाज में उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है। अब हम लेते हैं एक ब्रेक एंड देन वी विल बी राइट बैक ऑन GAFM रेडियो नेटवर्क।
1: नौ शहरों,

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: They are five down at 221. 221 पे पांच खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। पीक खेल रहे हैं 12 रन पे 19 गेंदों पे दो चौके लगाकर और कूपर कॉनली ने क्या जबरदस्त बैटिंग की है। 119 रन बना रखे हैं 115 गेंदों पे 11 चौके और 3 छक्के लगाकर 57 गेंदों पे 56 रन अभी भी चाहिए। और अभी भी अगर यहाँ पे कोई विकेट गिर जाती है तो जिस तरह की बांग्लादेश में कंडीशंस होती हैं या जिस तरह के इनके स्पिनर्स परफॉर्म दिखाते हैं या परफॉर्मेंस करते हैं तो उसमें खतरा है कि बांग्लादेश इनको एक बार फिर बैकफुट पे ले जाए ऑस्ट्रेलिया को और एक और मैच जीत जाए। बहरहाल अगर नहीं भी जीतते तो 2-1 से सीरीज जीतना ऑस्ट्रेलिया जैसी वर्ल्ड फेमस टीम के अगेंस्ट एक बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि बांग्लादेश अपने मुल्क में खेल रहा है। बट स्टिल विक्ट्री इज अ विक्ट्री और ये बड़ी एक जबरदस्त कामयाबी होगी अगर वो ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में हराकर व्हाइट वॉश कर दें तो। बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ये नतीजा भी तकरीबन जाहिर है कि अब आ ही जाएगा आधे पौने घंटे तक एंड यू विल गेट टू नो कि हु वन द मैच। तो ये सूरत हाल है। आज अब एक और जो सीरीज जारी है वो श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के दरमियान है। पहला T20 वेस्ट इंडीज जीत गई थी, दूसरा श्रीलंका ने 37 रन से अपने नाम किया। किंगस्टन जमैका में गुजश्ता शब ये मुकाबला खेला गया। श्रीलंका ने पहले बैटिंग की और 194 रन बना डाले। निसांका कुछ खास न कर सके। कॉट जोसेफ बोल्डफोर्ड 7 रन बनाए। पाशाल मेंडेस जो कि टीम के कैप्टन हैं स्कोर 31/19 बॉल विद द हेल्प ऑफ 2 बाउंड्रीज एंड 2 सिक्सेस। और पाशाल मेंडेस वही हैं जिन्होंने आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई थी पाकिस्तान के लास्ट PSL में। कमेल मिश्रा ने 61 रन बनाए नॉट आउट 40 गेंदों पे 4 चौके और 3 छक्के लगाए। बैटेड विद सम ब्रूटैलिटी। रतन नायके ने 1 रन बनाया 6 गेंदों पे। कॉट होप बोल्ड स्प्रिंगर। कमिंडो मेंडेस ने 24 रन बनाए 20 गेंदों पे 2 छक्के लगाए। अच्छी बैटिंग की। कॉट रदरफोर्ड बोल्डफोर्ड। डोसन शानका कॉट हेटमायर बोल्ड जोसेफ 58 रन बनाए महज 24 गेंदों पर 5 चौके और 4 छक्के लगाए। जबकि वेला लगे ने 1 रन बनाया 2 गेंदों पर 11 एक्स्ट्राज रहे 194 रन बनाए उन्होंने 6 विकेट के नुकसान पर। अभी हजारंगा बाकी थे, तिक्सना बाकी थे, चवीरा एंड ईशान मलिंगा वॉज लेफ्ट इन द बैटिंग एज वेल। फर्स्ट विकेट फेल एट 42/42, थर्ड फेल एट 43, चौथी विकेट 88, फिफ्थ विकेट टंबल्ड एट 191 एंड सिक्स्थ फेल एट 194। अकील हुसैन ने 2 ओवर के 11 रन दिए। मैथ्यू फोर्ड 4 ओवर 38 रन 2 विकेटें। शेफर्ड 3 ओवर 41 रन कोई विकेट नहीं। शिमार जोसेफ 4 ओवर 32 रन 3 विकेटें। शमार स्प्रिंगर 4 ओवर 40 रन 1 विकेट और रॉस्टन चेज ने 3 ओवरों में 27 रन दिए। बट आई डोंट नो व्हाई ही डिडंट ब्रिंग द अकील हुसैन बैक जिन्होंने सिर्फ 2 ही ओवर किए। वेस्ट इंडीज के लिए ब्रेंडन किंग सिर्फ 2 रन बना सके। LBW हो गए चमीरा के अगेंस्ट। शाय होप LBW हुए वलैलगी की गेंद पर 6 रन बनाए 4 गेंदों पर। 36 रन बनाए हेटमायर ने रन आउट हो गए 4 चौके और 2 छक्के लगाए। ही वाज शेपिंग वेल। रोमन पावल कॉट हजारंगा बोल्ड तिक्साना 43 रन बनाए 26 गेंदों पर 5 चौके और 2 छक्के लगाए। और फिर टीम स्ट्रगल कर गई। शेफर्ड 14 रन बना सके। कॉट निसंग का बोल्ड हजारंगा 11 गेंदों पर। रॉस्टन चेज कोट मेंडिस पाउल चमीरा 17 गेंदों पर 17 रन बना सके। शेफर्ड LBW बोल्ड हजारंगा कोई रन बना सके। मैथ्यू फोर्ड ने जनाब 8 रन बनाए 6 गेंदों पर। कॉट शमीरा बोल्ड वेले लगे। शेमार स्प्रिंगर कॉट रतनाई के बोल्ड शमीरा 1 रन 6 गेंदों पर। अकील हुसैन कोल्ड में शारा बोल्ड हजारंगा 14 रन बनाए 6 गेंदों पर 2 छक्के लगाए उन्होंने अच्छी बैटिंग की। शिमार जोसेफ नॉट आउट रहे 11 गेंदों पर 5 रहे एक्स्ट्रा स्क्रीन इस तरह 157 रन वेस्ट इंडीज ने मजमुई तौर पर स्कोर किया और 37 रन से मुकाबला हारे। फर्स्ट विकेट वेंट एट 7, सेकंड वेंट डाउन एट 9, तीसरी विकेट 90 पे गिरी और उस वक्त मैच में एक तरह से वापस आती दिखाई दे रही थी वेस्ट इंडीज। लेकिन फिर चौथी विकेट 91, पांचवी 108, छठी 108, सातवीं 119, आठवीं 122, नवीं 144 एंड द लास्ट विकेट फेल एट 157। अभी भी 11 गेंदों का खेल बाकी था जब वेस्ट इंडीज ऑल आउट हो गई। वेलालागे ने 3 ओवर की 28 रन 2 विकेटें हासिल की। दुशामंत चमीरा 3.1 ओवर 9 रन और 3 विकेटें। एहसान मलिंगा 3 ओवर 41 रन कोई विकेट नहीं। महेश थिक्साना 4 ओवर 34 रन 1 विकेट। वनिंदु हसरंगा 4 ओवर 38 रन 3 विकेटें और डॉसन शानाका ने 1 ओवर में 6 रन दिए। दैट्स हाउ श्रीलंका लिवर्ड द T20 सीरीज आफ्टर 2 मैचेस विद 1 ईच। और देखते हैं कि अब क्या सूरत हाल आगे बनेगी। तो ये सूरत हाल रही है इन मैचेस की। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की एक मतलब तो फिर मैं आपको चलते चलते अपडेट दे दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने जो टारगेट चेस कर रहे हैं 275 रन का, वो कहां तक पहुंचे हैं और क्या सूरत हाल है उनकी मीरपुर बांग्लादेश में। और देखना ये है कि किस तरह से टारगेट को परचेज कर पाएंगे या नहीं। मुकाबला यकीन काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। इन दोनों टीमों के दरमियान 42 ओवर के बाद 233 रन पे 5 खिलाड़ी आउट हैं। ऑस्ट्रेलिया को 42 रन चाहिए, 48 गेंदों का खेल बाकी रह गया है। तो इसी के साथ अपने प्रोग्राम के मेजबान राणा इशफाक को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट संडे तक टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह निगेबान।

पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त आज़ाद कश्मीर में जारी बेचैनी पाकिस्तान जी साख खे नुक़सान ॾेई रही आहे। अहिड़ी सूरत हाल दुश्मन अंसर भारत ऐं इसराइल गठजोड़ खे पंहिंजा मक़सद हासिल करण में गैर ज़रूरी मौक़ो फराहम करे रही आहे। जारी कयल बयान में बिलावल भुट्टो चयो त हिन वक़्तु पूरी दुनिया जो ध्यानु पाकिस्तान तरफ़ आहे। इस्लामाबाद मुआदे ते सयूं पाकिस्तान लाइ तारीख़ी लम्हो हूंदो। सियासी शिकायतुनि ऐं इख़्तिलाफ़नि जो हल जमहूरी आइनी ऐं पुरमन ज़रिए कढणु घुर्जे। पार्लियामान ऐं सियासी अमल अहिड़ा मसला हल करण लाइ मुनासिब फॉर्म्स आहिनि। इलेक्शन कमीशन खां वक़्त खां अॻु चूंड शेड्यूल वापसि करण जो मुतालबो करे चुका आहियूं। इल्तवाइट शिकायतुनि जे अज़ाले लाइ ट्रुथ एंड रिकनसिलिएशन कमीशन क़ाइम करण जी कोशिश कंदासीं। वफ़ाक़ी हुकूमत जो बजट 2026 ऐं 2027 में ज़रखेज़ स्कीम तहत 7,000 नंढनि खे 300 अरब रूपियनि जा बिना व्याज कर्ज़ फराहम करण जो ऐलान। बजट दस्तावेज़ मूजिब ज़रई मशीनरी लाइ 5,000 अरब रूपया सब्सिडी लाइ मुख़्तस। 12 एकड़ खां घटि ज़मीन मालिकनि खे 1,500 रूपया फ़ी एकड़ सब्सिडी फराहम कई वेंदी। भाण जा अघु घटि रखण लाइ भाण कंपनियुनि खे 20 अरब रूपियनि जो पैकेज ॾिनो वेंदो। मौसमियाती तब्दीलीअ खे मुंहुं ॾियण ऐं ज़रई शोबे खे नुक़सान खां बचाइण लाइ आलमी बैंक जी मदद सां 20 करोड़ डॉलर मुख़्तस कया विया। क़ौमी असेंबली में नए माली साल जे बजट ते बहस। अपोज़िशन मेंबर्स पारां मुल्क अंदरि वधंदड़ महांगाई ते ज़ाब्तो आणण जो मुतालबो। MNA शाहिद खटक जो चवण हो त मुल्क में घाटे टोड़ महांगाई आहे। तेल जा अघ तारीख़ जे बुलंद तरीन सतह ते मौजूद आहिनि। विचोले तबिके जे इस्तेमाल जूं शयूं बि महांगियूं थी वियूं आहिनि। घटि आमदनी वारा परेशान आहिनि। उस्मान बादैनी चयो त बलोचिस्तान में मौजूद मैदनियात सां पाकिस्तान जो कर्ज़ ख़तम थी सघे थो। गवादर पोर्ट ते 25 साल खां हले पियो। उतां जे माण्हुनि खे पीअण जो साफ़ पाणी बि नथो मिले। सुत समा वारे फाकी वज़ीर अता ताड़ चयो आहे त समूरी दुनिया क़बूल कयो त पाकिस्तान अमन लाइ किरदार अदा कयो। अॼु क़ौमी झंडे जी इज़त आहे। मैशत बि दुरुस्त रस्ते ते आहे। जिते मुल्क जी इज़त जी ॻाल्हि हुजे त उते पंहिंजी ज़ात जी इज़त महसूस करणु घुर्जे। वफ़ाक़ी वज़ीर क़ौमी असेंबली में बजट इजलास खे ख़िताब कंदे वधीक चयो त बजट तनक़ीद ऐं एहतजाज अपोज़िशन जो हक़ आहे, पर हाकारी क़दमनि जी वाखाण बि थियणु घुर्जे। समूरनि शोबनि सां मुशावरत बाद बजट तयारु कई वई।

0: ایران ऐं अमेरिका जंग जे ख़ात्मे लाइ मुआदे ते सयूं अॼु थींदियूं या न, अमेरिका ऐं ईरान जे बयाननि सां सूरतहाल वाज़े न थी सघी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवण हो त ईरान सां अमुन मुआदे ते सयूं अॼु थींदियूं। मुआदे ते सयूं थींदे ई अबनाए हुरमत सभिनी लाइ खुली वेंदो। सकून थियण बाद मुनासिब वक़्त ते एटमी मवाद जी बाक़ियात बि हासिल करे वठंदासीं। ईरानी फ़ौज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जे अॼु अमुन मुआदे ते सयन वारी दावा रद्द करे छॾी। ईरानी पासदारनि इनकलाब फोर्स जो चवण हो त कंहिं बि मुआदे ते सयूं न करण बाबति आगाह करे चुका आहियूं। सदर डोनाल्ड ट्रंप सही वारी तकरीर पंहिंजी सालगिरह जे करे 14 जून ते करण चाहे थो। ट्रंप उन मौके खे अलामती अहमियत ॾेई पंहिंजी ज़ाती मशहूरीअ जो प्रोग्राम बणाए रहियो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलाइण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252578 6।
4: जी हाँ 2315525786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरिया ए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पूरे मुल्क की मैशत मुतासिर थी दी। सखर बिरा के दौरे दौरान मीडिया से गाले वे वजीर मुराद अली शाह तो टे डी अग वजीर आजम के खत लिखी हो तो हैरान आया तो पानी वधिक होजन बावजूद सिंध के गुजरियल साल का भी घट पानी दिनो वो मंगला तरबेला बेन डेमन में वधिक पानी स्टोर कयो पियो वञे। इहा सिंध खिलाफ साजिश आहे। असा टेलीमेट्री सिस्टम के मॉनिटर कर रहा आयु पंजे हिस्से जो पूरो पानी वठंदासी। सखर बराज 100 वरन का मुल्की मैशत में किरदार अदा कर रही है। फर्श जो सिर्फ 15 फुट हिस्सों कमजोर थो जैसी मरम्मत कई वही है।

0: समावारे फाकी वज़ीर अता तारड़ चयो आहे त समूरी दुनिया क़बूल कयो त पाकिस्तान अमुन लाइ किरदार अदा कयो आहे। अॼु क़ौमी झंडे जी इज़त आहे, मैशत बि दुरुस्त रस्ते ते गामज़न आहे। जिते मुल्क जी इज़त जी ॻाल्हि हुजे त उते पंहिंजी ज़ात जी इज़त महसूस करणु घुर्जे। वफ़ाक़ी वज़ीर क़ौमी असेंबली में बजट सेशन खे ख़िताब कंदे वधीक चयो त बजट ते तनक़ीद ऐं एहतिजाज अपोज़ीशन जो हक़ आहे, पर हाकारी क़दमनि जी वाखाण थियणु घुर्जे। समूरनि शोबनि सां मुशावरत बाद बजट तयार कई वई, हर तबके खे फ़ाइदो पहुचायो आहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो मिस्र ऐं तुर्क परडेही वज़ीरनि सां फोन ते राब्तो, खिते जी तब्दील थींदड़ सूरत हाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठ। परडेही तर्जुमान मूजिब ॻाल्हि ॿोल दौरान अमरीका में हाकारी अगभराई जी आचीअ हाकारी अगभराई सां खिते में जटादार अमन जो रस्तो खुलण जी बि उमेद ज़ाहिर कई वई। अॻवाननि जो थींदड़ अगभराई जे हवाले सां राब्ते में रहण ते बि तफ़ाक़। कतर जे वफ़द पारां तहरान जो दौरो, ईरानी मीडिया मूजिब कतरी वफ़द ईरानी अख़्तियारनि सां गॾिजी इसराइल सां जंग जे ख़ात्मे ते ताज़ी अगभराई जो जाइज़ो वरितो। दौरे जा वधीक तफ़सील साम्हूं न अची सघिया। लबनान जी राजधानी बेरूत ते इसराइली फ़ौज जा मिज़ाइल हमला, ॿ ॼणा शहीद, केतिरा ई ज़ख़्मी। परडेही मीडिया मूजिब बेरूत जे ॾाखिणे इलाइक़े में इमारत ते हवाई हमले में ॿ ॼणा शहीद थी विया, चार ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। जंगी जहाज़नि चार गाइडेड मिज़ाइलनि सां बेरूत जे ॾाखिणे इलाइक़े खे निशानो बणायो। ईरान ऐं अमरीका जंग जी ख़ात्मे लाइ मुआदे ते सयूं अॼु थींदियूं या न, अमरीका ऐं ईरान जे बयाननि सां सूरतहाल वाज़े न थी सघी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवणु आहे त ईरान सां अमुन मुआदे ते सयूं अॼु थींदियूं। मुआदे ते सयूं थींदे ई आबनाए हुरमत सभिनी लाइ खुली वेंदो। सकून थियण बाद मुनासिब वक़्त ते एटमी मवाद जी बाक़ियात बि हासिल करे वठंदासीं। ईरानी फ़ौज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी अॼु अमुन मुआदे ते सयुनि वारी दावा रद्द करे छॾी। ईरानी पासदारान इनकलाब फोर्स जो चवणु आहे त कंहिं बि मुआदे ते सयूं न करण बाबति आगाह करे चुका आहियूं। सदर डोनाल्ड ट्रंप सही वारी तकरीब पंहिंजी सालगिरह जे करे 14 जून ते करणु चाहे थो। ट्रंप उन मौक़े खे अलामती अहमियत ॾेई पंहिंजी ज़ाती मशहूरीअ जो प्रोग्राम बणाए रहियो आहे। रतो देरो वेझो हथियारबंदनि जी मोटरसाइकिल सवारनि ते फायरिंग, ॿ ॼणा मारिजी विया। ॻोठ मीर मोहम्मद जलबाणी लाड़े वटि हथियारबंदनि ॿिनि ॼणनि खे गोलियूं हणी क़तल कयो। मक़तूलनि जी 45 वरनि जे लालू जोयो ऐं 55 वरनि जे राजा जो सुञाणप, लाश अस्पताल मुंतकिल। चवणु आहे त जतोई बिरादरी जे हथियारबंदनि नौजवाननि खे क़तल कयो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: GAFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।
5: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
6: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पो हाने खणो फोन ऐं पेंजे इश्तियार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331252576।
6: जी हाँ, 2315525786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GAFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
2: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GAFM नेटवर्क सिंध राउंड अप संगदे मां गुलाब खान भेण।

सिंध राउंड अप में अज अवां बुधी सकंदा एशिया जी सब खां वडी मंछुर डंड सुकी वई अख्तियार नोटिस न वरतो एमक्यूएम जे मुतालबे ते वफाक पारां कराची ऐं हैदराबाद जे लाइ 25 अरब रुपयनि जो तरक़ियाती पैकेज ते इतफ़ाक़ NICVT जी मुफ्त इलाज जे मॉडल खे मदीर ताईं वधायो वेंदो वॾो वज़ीर सैद मुराद अली शाह गाढ़नि चांवरनि जे देस लाड़ पट में सख़्तु सो कहिड़ो इंसानी हयातियूं ख़तरे में फसल तबाह हैदराबाद में समाजी तंदीम तरफ़ां ॿारनि खां मज़दूरी कराइण ख़िलाफ़ आलमी ॾिहाड़े जे हवाले सां सुरनि जे भठे ते कम कंदड़ मज़दूरनि ऐं संदनि ॿारनि जे लाइ तक़रीब मुनक़िद ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अव्हां ॿुधी सघंदा सिंध कहिड़नि मसलनि खे मुंहुं ॾेई रही आहे एशिया जे सभ खां वॾे में वॾी मंछुर डंड सुकी वई पाणी न हुजण सबब मंछुर डंड 2 किलोमीटर ताईं बंजर ज़मीन जहिड़ो ॾेख ॾियण लॻी आहे गॾु कयल रिपोर्ट डंड में पाणी गुज़ारण ते मंछुर डंड में पाणी 104 RL यानी 4 थी वई मंछुर तोड़े भर पासे जूं ज़मीनूं बि बंजर थियण लॻियूं आहिनि आबादगार फाकाकशीअ में मुबतला थी विया मंछुर जे 1,50,000 इंसानी आबादी पीअण तोड़े ज़रई पाणीअ खां महरूम थी वई आहे पाणी माहिरनि जो चवणु आहे त एशिया जी वॾे में वॾी मंछुर डंड में पाणी न अचण सबबि सूरत हाल घंटे जोगी बणिजी वई आहे पाणी जी शदीद खोट सबबि डंड लॻभॻि 2 किलोमीटर ताईं सुकी वई आहे जंहिं करे आबी जीवत मुहाणनि ऐं मक़ामी आबादीअ जे रोज़गार खे सख़्त ख़तरा वधी विया आहिनि माहिरनि मूजिबि जेकॾहिं मंछुर डंड ॾांहुं पाणीअ जी फरहमी बहाल न कई वई त माहौलियाती तबाहीअ सां गॾु हज़ारे ख़ानदाननि जी मईशत बि मुतासिर थी सघे थी मक़ामी माण्हुनि जो चवणु आहे त सिंध खे हथ सां बंजर बणायो वियो आहे मंछुर डंड ॾिसूं सुकी वई आहे हितां जे माण्हुनि खे कंगाल कयो वियो आहे हथ सां मंछुर डंड खे सुकायो वियो आहे हुकूमत खे फौरी क़दम खणण ऐं डंड खे बचाइण जे लाइ पाणी जी फराहमी यकीनी बनाइण जो मुतालबो कयो वियो आहे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ MQM पाकिस्तान जे मुतालबे ते कराची ऐं हैदराबाद जे लाइ तरक़ियाती पैकेज जी मंज़ूरी ॾियण ते रज़ामंदी ज़ाहिर करे छॾी MQM पाकिस्तान जे वफ़द वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात कई जंहिं में ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी फारूक सत्तार मुस्तफ़ा कमाल अमीनुल हक ऐं जावेद हनीफ़ शामिल हुआ मुलाक़ात दौरान वज़ीर आज़म सां गॾु इसहाक़ डार राणा सनाउल्ला एसन इक़बाल आज़म नज़ीर तारड़ ऐं अताउल्ला तारड़ पिणु मौजूदु हुआ ज़रियनि मूजिबि मुलाक़ात में बजट तजवीज़ुनि बलदियाती हुकूमतुनि बाबति तजवीज़ कयल आइनी तरमीमी बिल ऐं सिंध में गवर्नर जे मामले ते बि ॻाल्हियूं थियूं ज़रियनि जो चवणु आहे त वज़ीर आज़म कराचीअ खां 20 अरब रुपियनि ऐं हैदराबाद जे लाइ 5 अरब रुपियनि जे तरक़ियाती पैकेज ते इतफ़ाक़ कयो आहे ज़रियनि मूजिबि हुकूमत MQM जे तजवीज़ कयल आइनी तरमीमी बिल बाबति गॾिजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ सां ॻाल्हियुनि जी ख़ातिरी पिण कराई आहे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ MQM जे तजवीज़ कयल आइनी तरमीमी बिल जी हिमायत करे थो सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो वेस्क्यूलर डिज़ीज़ ऐं हसन सुलेमान मेमोरियल हस्पताल मलीर जे विच में मुफ़ामती MOU ते सहियुनि जी तक़रीब जी सदारत कई जंहिंजो मक़सदु मलीर ऐं आसपास जे इलाइक़नि जे रहाकुनि लाइ दिलि जे मर्ज़नि जी जामिया ख़िदमतुनि जी फ़राहमी आहे उन भाङे वारे तहत हसन सुलेमान मेमोरियल हस्पताल दिलि जे हंगामी मरीज़नि जी जांच मरीज़नि खे मुस्तहकम करण ऐं इलाज खां पोइ जी निगहदाश्तूं ख़िदमतूं फ़राहम कंदो जड॒हिं त एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी ऐं दिलि जे ऑपरेशन जहिड़नि जदीद इलाज जी ज़रूरत वारनि मरीज़नि खे हिकु मख़सूस रेफरल निज़ाम ज़रिए NICVT मुंतक़िल कयो वेंदो उन तावन में टेली कार्डियोलॉजी सपोर्ट माहिरनि जी मुशावरत ऐं तिबी नीम तिबी पैरामेडिकल अमले जी सलाहियतुनि में इज़ाफ़ो पिणु शामिल आहे सैन जी तक़रीब वज़ीर आला हाउस में मुनक़िद थी जंहिं में सिहत वारे वज़ीर डॉक्टर अदरा फज़ल पेचू हो वॾे वज़ीर जी सेक्रेटरी आसिफ़ जमील सिहत सेक्रेटरी ताहिर सांगी NICVT जे क़ाइम मक़ाम एसोसिएट एग्ज़ीक्यूटिव डॉक्टर असद बलाल अवाण प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद हायर एजुकेशन कमीशन HEC जे चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तारिक रफ़ी ऐं ॿियनि सीनियरनि इख़्तियारनि शिरकत कई सिज वॾे वज़ीर ख़िताब कंदे चयो त सिंधु हुकूमत मयारी तिबी सहूलियतुनि ताईं रसाईअ खे वसवत ॾियण ऐं जान बचाईंदड़ दिलि जे मरीज़ जे इलाज खे आवाम जे घरनि जे वेझो पहुचाइण जे लाइ पुरज़म आहे हुन चयो त NICVT मुफ़्त ऐं आलमी मयार जी दिलि जे इलाज जी फ़राहमी ज़रिए लखे माण्हुनि लाइ उमेद जी अलामत बणिजी चुको आहे
وڈے وزیر صحت خاتے این آئی سی وی ڈی انتظامیہ کی ہدایت کئی تو معاہدے سے اثرائت عمل درآمد کے یقینی بنایا وجے اڑن مریضن کے مضبوط ریفرل منتقلی جو نظام تیار کیا وجے جن کے دل کے جدید علاج کی ضرورت ہوجائے.

सिंध जे सामुंडी पटीअ वारे पुछड़ीअ वारे ज़िले ठते में पाणीअ जी शदीद खोट संगीन सूरत हाल इख़्तियार करे वई आहे, जंहिं सबबि ज़रई ज़मीन फसल सख़्त मुतासिर थी रहिया आहिनि। ठटे ज़िले जे मुख़्तलिफ़ वाहन शाखुनि ऐं बिराजनि में पाणीअ जी फरहमी इंतिहाई घटिजी वञण करे सारियालो फसल सुकी ठोठ बणिजी वियो आहे, जॾहिं त केतिरनि ई वाहन ऐं शाखुनि में पाणीअ जी जाइ ते वारी उॾामण जा मंज़र ॾिसण में अची रहिया आहिनि। केतिरनि ई ॻोठनि में रहवासी पीअण जे पाणीअ जे लाइ मेलनि जा मुफ़ासिला तय करण ते मजबूर आहिनि, जंहिं सबबि रोज़ानी ज़िंदगी बि सख़्त मुतासिर थी रही आहे। ॿिए तरफ़ आबादगार हारिन ऐं समाजी तनज़ीमुनि हुकूमत खां मुतालबो कयो आहे त कोटड़ी बिराज खां हेठां इलाइक़नि ताईं पाणीअ जे मुनसिफ़ाणे विछ खे यकीनी बणायो वञे, डाउन स्ट्रीम में पाणीअ जी फराहमी बहाल कई वञे ऐं मुतासिर इलाइक़नि खे हंगामी बुनियादनि ते रिलीफ फराहम कयो वञे, त जीअं ज़रई तबाही ऐं इंसानी बुहरान खे रोके सघिजे। वफ़ाक़ी हुकूमत ईंदड़ माली साल जे बजट में वफ़ाक़ी मुलाज़मन, हथियारबंद फ़ौज ऐं पेंशनरनि लाइ रिलीफ पैकेज जो ऐलान करे छॾियो आहे। फाइनेंस बिल मूजिब नए पी स्केल में 2022 जा 15% ऐं 2025 जा 10% एडाक रिलीफ बुनियादी पघार में ज़िम कया वेंदा। सभिनी वफ़ाक़ी सरकारी मुलाज़मनि खे हलंदड़ बुनियादी पघार रनिंग बेसिक पे ते 7% एडहाक रिलीफ अलाउंस ॾिनो वेंदो, जॾहिं त ग्रेड 1 खां 22 ताईं जे मुलाज़मनि खे डिस्पेरिटी रेडिकेशन अलाउंस 2026 बुनियादी पघार जे 15% जे बराबर मिलंदो। फाइनेंस बिल मूजिब कन्वेंस अलाउंस में मौजूदा रक़म खां 50% वाध कई वेंदी। सिविल आर्म फोर्स लाइ कॉन्स्टेंट अटेंडेंट अलाउंस 7000 मां वधाए 3000 रुपया कयो वियो आहे, जॾहिं त काबीना डिवीज़न जे ऑफिसरनि ऐं अमले जी स्पेशल पे 6000 मां वधाए 20000 रुपया माहवार कई वई आहे। उन खां सवाइ नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस जे स्केल 1 खां 22 जे मुलाज़मनि जो स्पेशल अलाउंस 10% मां वधाए 50% कयो वियो आहे। स्पेशल कन्वेंस अलाउंस 6000 मां वधाए 10000 रुपया कयो वियो आहे, जॾहिं त सभिनी पेंशनर जे बेस लाइन पेंशन में 7% वाध कई वई आहे। हीउ समूरा रिलीफ उपाउ 1 जुलाई 2026 खां लागू थींदा। हैदराबाद में समाजी तनज़ीम तरफ़ां ॿारनि खां मज़दूरी कराइण ख़िलाफ़ आलमी ॾिहाड़े जे हवाले सां सिरुनि जे पठन ते कम कंदड़ मज़दूरनि ऐं संदन ॿारनि जे लाइ तकरीब मुनक़िद कई वई। सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड्स स्पॉक पारां टंडो हैदर वेझो हिकु तकरीब मुनक़िद कई वई। तकरीब में सिरुनि जे पठन ते कम कंदड़ मज़दूरनि ऐं ॿारनि वॾे तादाद में शिरकत कई। तकरीब में ॿारनि पारां चाइल्ड लेबर जे ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ इस्लाही टेबलोज, स्टेज ड्रामा, कलाम ऐं मुख़्तलिफ़ रांदियुनि में हिसो वरितो वियो। तकरीब में स्पार्क जे अॻवाननि काशिफ़ बजीर, वाजिद जागीरानी, शौकत सरेवाल, सहरुनिसा ऐं ॿियनि शिरकत कई। अॻवान जो चवणु हुयो त सिरुनि जे बठनि ते केतिरा ई ख़ानदान गुरबत ऐं कर्ज़नि में फासी विया आहिनि। स्पार्क मूजिब ही मुआशी दबाउ जबरी ॿारनि जी मज़दूरीअ जो वॾो सबबु आहे, जिते ख़ानदान पंहिंजे ॿारनि खे बि ख़तरनाक कम में शामिल करण ते मजबूर थियनि था। अहिड़ी सूरत हाल ॿारनि खे तालीम ऐं बुनियादी हक़नि खां महरूम करे रही आहे ऐं मज़दूरनि में ज़हनी दबाउ ऐं मायूसी पैदा करे रही आहे। इन्हनि इस्लाही थिएटर ऐं टेबलो ज़रिए भठे मज़दूरनि खे संदन हक़नि, जबरी मज़दूरीअ जे ख़तरनि ऐं ॿारनि जे तालीम जी अहमियत बाबति आगाही ॾिनी।

पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंध पाकिस्तान जो मुआशी ज़रई ऐं सामूंडी लिहाज़ खां इंतिहाई अहम सूबो आहे। 2026 में सिंध खे हिकु ई वक़्त केतिरनि ई चैलेंजनि ऐं मौक़नि खे मुंहुं ॾियणो पियो आहे। पाणीअ जो बुहरान सभ खां वॾो मसलो। सिंध हिन वक़्त पाणीअ जी खोट जे संगीन सूरत हाल खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। आपाशी वाहन में पाणीअ जी घटिताई सबब ख़ासि तौर ते हेठाई सिंध जे आबाद घरनि में गणती वधी वई आहे। ज़रई पैदावार ख़ासि करे चांवर, कमंद ऐं ॿिनि फसलनि ते मनफ़ी असर जा ख़दशा ज़ाहिर कया पिया वञनि। ताज़नि रिपोर्टुनि मूजिबि पाणीअ जी खोट सिंध ऐं बलोचिस्तान जे केतिरनि ई इलाइक़नि में मुआशी ऐं समाजी मसला वधाए रही आहे। मईशत ऐं वापार। सिंध पाकिस्तान जे मुआशी मर्कज़ तौरु अञा बि अहम हैसियत रखे थो, जिते कराची मुल्क जो सभ खां वॾो सनती ऐं वापारी शहर आहे। पाकिस्तान जी मईशत में 2025-2026 दौरान वाध जो रुझान ॾिठो वियो आहे, जंहिं जा मुस्बत असर सिंध जे सनत ऐं ख़िदमतुनि वारे शोबे ते बि पिया आहिनि। ज़रई ऐं सनती सरगर्मियुनि में बहितरीअ जा इशारा मिलिया आहिनि, जेतोणीक पाणीअ जी खोट हिकु वॾो ख़तरो बरक़रार आहे। मौसमियाती तब्दीली ऐं गर्मी। सिंध ख़ासि तौर ते सख़्त गर्मीअ जे लहर खां मुतासिर थी रहियो आहे। कराची ऐं ॿियनि ॾाखणनि इलाइक़नि में 44 डिग्री सेंटीग्रेड खां वधीक गर्मी रिकॉर्ड कई वई आहे। माहिरनि मूजिबि मौसमियाती तब्दीलीअ सबब गर्मीअ जूं लहरूं वधीक शदीद ऐं बार बार थियण लॻियूं आहिनि, जंहिं सां सिहत, पाणी ऐं बिजली जी फराहमीअ ते दबाउ वधी रहियो आहे। सिहत जे शोबे में कुझु बहितरीअ जा इशारा मौजूदु आहिनि। ख़ासि तौर ते वॾनि इस्पतालुनि जी गुंजाइश ऐं बजट में वाध जे हवाले सां बहरहाल साफ़ पाणीअ जे खोट, गर्मी ऐं माहौलियाती मसलनि सबबि केतिरनि ई इलाइक़नि में सिहत जा चैलेंज बरक़रार आहिनि। कुझु रिपोर्टनि मुताबिक़ सिंध जे केतिरनि इलाइक़नि में पाणी जे मयार बाबति ख़दशा मौजूदु आहिनि। तालीम जे शोबे में स्कूलनि जी सहूलियतुनि, उस्तादनि जी खोट ऐं इंफ्रास्ट्रक्चर जा मसला अञा बि मौजूदु आहिनि। शहरी इलाइक़नि में ॻोठाणनि इलाइक़नि जे विच में तालीमी सहूलियतुनि जो फ़र्क़ु नुमाया आहे। माहिरनि तालीम जे मयार ऐं स्कूलनि में हाज़िरी वधाइण ते ज़ोर ॾिनो आहे। ज़रात। सिंध पाकिस्तान जे ज़रई पैदावार में अहम हिसो रखे थो। चांवर, कणक, कमंद ऐं कपह सिंध जूं अहम फसल आहिनि। ज़रात में वाध जा इम्कान मौजूदु आहिनि, पर पाणीअ जी खोट ऐं मौसमियाती तब्दीली मुस्तक़बिल लाइ वॾा ख़तरा समुझा वञनि था। सिंध जी मौजूदा सूरत हाल में टे वॾा मसला नुमाया आहिनि। पाणी जी खोट ऐं दरियाई वसीलनि बाबति ख़दशा, मौसमियाती तब्दीली ऐं सख़्त गर्मी। तालीम ऐं सिहत जे शोबे में बुनियादी सहूलियतुनि जी ज़रूरत। साॻे वक़्त कराची जे वापारी सरगर्मियुनि, ज़रई इस्लाहातुनि ऐं सनअती बुनियादनि सबब सिंध वटि तरक़ीअ जा मनसूबा ऐं मौक़िया पिणु मौजूदु आहिनि। जेकॾहिं पाणी, तालीम, सिहत ऐं माहौलियाती मसलनि ते मौसर पॉलिसियूं इख़्तियार कयूं वञनि त सिंध मुल्क जी तरक़ीअ में वधीक अहम किरदार अदा करे सघे थी।

0: हुयो हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंडअप ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त अलह निगहबान।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: It's 8:15 PM.
1: This time chat is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Harniya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एट 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं। आपको दे बेटा निकिच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
2: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंड अप संगदे मां गुलाब खान भेण।

सिंध राउंडअप में अज अवां बुधी सघंदा। एशिया जी सब खां वॾी मंछुर डंड सुकी वई, अख़्तियारनि नोटिस न वरितो। MQM जे मुतालबे ते वफ़ाक पारां कराची ऐं हैदराबाद जे लाइ 25 अरब रुपियनि जो तरक़ियाती पैकेज ते इतफ़ाक़। NICVT जी मुफ़्त इलाज जे मॉडल खे मदीर ताईं वधायो वेंदो, वॾो वज़ीर सैद मुराद अली शाह। गाढ़नि चांवरनि जे देस लाड़ पट में सख़्तु सो कहिड़ो, इंसानी हयातियूं ख़तरे में, फसल तबाह। हैदराबाद में समाजी तंज़ीम तरफ़ां ॿारनि खां मज़दूरी कराइण ख़िलाफ़ आलमी ॾिहाड़े जे हवाले सां हिते कम कंदड़ स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा। सिंध कहिड़नि मसलनि खे मुंहुं ॾेई रही आहे। एशिया जे सभ खां वॾे में वॾी मंछुर डंड सुकी वई, पाणी न हुजण सबबि मंछुर डंड 2 किलोमीटर ताईं बंजर ज़मीन जहिड़ो ॾेख ॾियण लॻी आहे। गरकल रिपोर्टनि मूजिबि मंछुर डंड में पाणी घटिजण सबबि मच्छीअ जो नसल बि ख़तम थी वियो आहे। मुहाणा बुख ऐं बदहाली वारी ज़िंदगी गुज़ारण ते मजबूर बणियल आहिनि। मंछुर डंड में पाणी घटिजण सबबि पाणी सतह 104 RL यानी 4 थी वई। मंछुर तोड़े भरपासे जूं ज़मीनूं बि बंजर थियण लॻियूं आहिनि। आबादगार फाकाकशीअ में मुबतला थी विया। मंछुर जे 1,50,000 इंसानी आबादी पीअण तोड़े ज़रई पाणीअ खां महरूम थी वई आहे। पाणी माहिरनि जो चवण आहे त एशिया जे वॾे में वॾी मंछुर डंड में पाणी न अचण सबबि सूरत हाल घंटे जोगी बणिजी वई आहे। पाणी जी शदीद खोट सबबि डंड लॻभॻि 2 किलोमीटर ताईं सुकी वई आहे, जंहिं करे आबी जीवत मुहाणनि ऐं मक़ामी आबादीअ जे रोज़गार खे सख़्त ख़तरा वधी विया आहिनि। माहिरनि मूजिबि जेकॾहिं मंछुर डंड ॾांहुं पाणीअ जी फराहमी बहाल न कई वई त माहौलियाती तबाहीअ सां गॾु हज़ारे ख़ानदाननि जी मईशत बि मुतासिर थी सघे थी। मक़ामी माण्हुनि जो चवण आहे त सिंध खे हथ सां बंजर बणायो वियो आहे। मंछुर डंड ॾिसूं सुकी वई आहे, हितां जे माण्हुनि खे कंगाल कयो वियो आहे, हथ सां मंछुर डंड खे सुकायो वियो आहे। हुकूमत खे फौरी क़दम खणण ऐं डंड खे बचाइण जे लाइ पाणी जी फराहमी यकीनी बनाइण जो मुतालबो कयो वियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ MQM पाकिस्तान जे मुतालबे ते कराची ऐं हैदराबाद जे लाइ तरक़ियाती पैकेज जी मंज़ूरी ॾियण ते रज़ामंदी ज़ाहिर करे छॾी। MQM पाकिस्तान जे वफ़द वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात कई, जंहिं में ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक ऐं जावेद हनीफ़ शामिल हुआ। मुलाक़ात दौरान वज़ीर आज़म सां गॾु इसहाक़दार, राणा सनाउल्ला, एहसन इक़बाल, आज़म नज़ीर तारड़ ऐं अताउल्ला तारड़ पिण मौजूद हुआ। ज़रियनि मूजिबि मुलाक़ात में बजट तजवीज़ुनि, बलदियाती हुकूमतुनि बाबति तजवीज़ कयल आइनी तरमीमी बिल ऐं सिंध में गवर्नर जे मामले ते बि ॻाल्हियूं थियूं। ज़रियनि जो चवण आहे त वज़ीर आज़म कराचीअ खां 20 अरब रुपियनि ऐं हैदराबाद जे लाइ 5 अरब रुपियनि जी तरक़ियाती पैकेज ते इतफ़ाक़ कयो आहे। ज़रियनि मूजिबि हुकूमत MQM जे तजवीज़ कयल आइनी तरमीमी बिल बाबति गॾिजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां ॻाल्हियुनि जी ख़ातिरी पिण कराई आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ MQM जे तजवीज़ कयल आइनी तरमीमी बिल जी हिमायत करे थो। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो वेस्क्यूलर डिज़ीज़ ऐं हसन सुलेमान मेमोरियल हस्पताल मलीर जे विच में मुफ़ाहमती MOU ते सहियुनि जी तक़रीब जी सदारत कई, जंहिंजो मक़सदु मलीर ऐं आसपास जे इलाइक़नि जे रहाकुनि लाइ दिलि जे मर्ज़नि जी जामिया ख़िदमतुनि जी फ़राहमी आहे। उन भाङे वारे तहत हसन सुलेमान मेमोरियल हस्पताल दिलि जे हंगामी मरीज़नि जी जांच, मरीज़नि खे मुस्तहकम करण ऐं इलाज खां पोइ जी निगहदाश्त जूं ख़िदमतूं फ़राहम कंदो, जड॒हिं त एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी ऐं दिलि जे ऑपरेशन जहिड़नि जदीद इलाज जी ज़रूरत वारनि मरीज़नि खे हिकु मख़सूस रेफरल निज़ाम ज़रिए NICVT मुंतक़िल कयो वेंदो। उन तावन में टेली कार्डियोलॉजी सपोर्ट, माहिरनि जी मुशावरत ऐं तिबी नीम तिबी पैरामेडिकल अमले जी सलाहियतुनि में इज़ाफ़ो पिण शामिल आहे। सयन जी तक़रीब वज़ीर आला हाउस में मुनक़िद थी, जंहिं में सिहत वारे वज़ीर डॉक्टर अदरा फज़ल पैचू हो, वॾे वज़ीर जी सेक्रेटरी आसिफ़ जमील, सिहत सेक्रेटरी ताहिर सांगी, NICVT जे क़ाइम मक़ाम एसोसिएट एग्ज़ीक्यूटिव डॉक्टर असद बिलाल अवाण, प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद, हायर एजुकेशन कमीशन HEC जे चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तारिक रफ़ी ऐं ॿियनि सीनियरनि इख़्तियारनि शिरकत कई। सिज वॾे वज़ीर ख़िताब कंदे चयो त सिंधु हुकूमत मयारी तिबी सहूलियतुनि ताईं रसाईअ खे वसत ॾियण ऐं जान बचाईंदड़ दिलि जे मरीज़ जे इलाज खे अवाम जे घरनि जे वेझो पहुचाइण जे लाइ पुरज़म आहे। हुन चयो त NICVT मुफ़्त ऐं आलमी मयार जी दिलि जे इलाज जी फ़राहमी ज़रिए लखे माण्हुनि लाइ उमेद जी अलामत बणिजी चुको आहे।
وڈے وزیر صحت خاتے این آئی سی وی ڈی انتظامیہ کے ہدایت کئی تو معاہدے سے اثرائتی عمل درآمد کے یقینی بنایا وجے اڑن مریضن کے مضبوط ریفرل منتقلی جو نظام تیار کیا وجے جن کے دل کے جدید سندھ کے سامنڈی پٹی والے پچھڑی والے ضلع ٹھٹے میں پانی کی شدید کھوٹ سنگین صورتحال اختیار کر رہی ہے جن سبب زرعی زمین فصل سخت متاثر تھی رہا ہے ٹھٹے ضلع کے مختلف واہن شاخن براجن میں پانی کی فراہمی انتہائی گھٹجی وجن کرے سارے آلو فصل سکی ٹھوٹ بنجی ویو ہے جدید کترن واہن شاخن میں پانی کی جی

हिते वारी उॾामण जा मंज़र ॾिसण में अची रहिया आहिनि। केतिरनि ई ॻोठनि में रहवासी पीअण जे पाणीअ जे लाइ मेलनि जा मुफ़ासिला तय करण ते मजबूर आहिनि, जंहिं सबबि रोज़ानी ज़िंदगी बि सख़्त मुतासिर थी रही आहे। ॿिए तरफ़ आबादगार हारियुनि ऐं समाजी तनज़ीमुनि हुकूमत खां मुतालबो कयो आहे त कोचड़ी बैराज खां हेठां इलाइक़नि ताईं पाणीअ जे मुनसिफ़ाणे विच खे यकीनी बणायो वञे, डाउन स्ट्रीम में पाणीअ जी फराहमी बहाल कई वञे ऐं मुतासिर इलाइक़नि खे हंगामी बुनियादनि ते रिलीफ फराहम कयो वञे त जीअं ज़रई तबाही ऐं इंसानी बुहरान खे रोके सघिजे। वफ़ाक़ी हुकूमत ईंदड़ माली साल जे बजट में वफ़ाक़ी मुलाज़मन, हथियारबंद फ़ौज ऐं पेंशनरनि लाइ रिलीफ पैकेज जो ऐलान करे छॾियो आहे। फाइनेंस बिल मूजिब नए पी स्केल में 2022 जा 15% ऐं 2025 जा 10% एडाक रिलीफ बुनियादी पघार में ज़िम कया वेंदा। सभिनी वफ़ाक़ी सरकारी मुलाज़मनि खे हलंदड़ बुनियादी पघार रनिंग बेसिक पे ते 7% एडहाक रिलीफ अलाउंस ॾिनो वेंदो, जॾहिं त ग्रेड 1-22 ताईं जे मुलाज़मनि खे डिस्पेरिटी रेडिकेशन अलाउंस 2026 बुनियादी पघार जे 15% जे बराबर मिलंदो। फाइनेंस बिल मूजिब कन्वेंस अलाउंस में मौजूदा रक़म खां 50% वाध कई वेंदी। सिविल आर्म फोर्स लाइ कॉन्स्टेंट अटेंडेंट अलाउंस 7,000 मां वधाए 3,000 रुपया कयो वियो आहे, जॾहिं त काबीना डिवीज़न जे ऑफिसरनि ऐं अमले जी स्पेशल पे 6,000 मां वधाए 20,000 रुपया माहवार कई वई आहे। उन खां सवाइ नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस जे स्केल 1-22 जे मुलाज़मनि जो स्पेशल अलाउंस 10% मां वधाए 50% कयो वियो आहे। स्पेशल कन्वेंस अलाउंस 6,000 मां वधाए 10,000 रुपया कयो वियो आहे, जॾहिं त सभिनी पेंशनर जे बेस लाइन पेंशन में 7% वाध कई वई आहे। ही समूरा रिलीफ उपाउ 1 जुलाई 2026 खां लागू थींदा। हैदराबाद में समाजी तनज़ीम तरफ़ां ॿारनि खां मज़दूरी कराइण ख़िलाफ़ आलमी ध्याड़े जे हवाले सां सिरुनि जे पठनि ते कम कंदड़ मज़दूरनि ऐं संदन ॿारनि जे लाइ तकरीब मुनक़िद कई वई। सोसाइटी फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ दी राइट्स ऑफ दी चाइल्ड्स स्पॉक पारां टंडो हैदर वेझो हिकु तकरीब मुनक़िद कई वई। तकरीब में सिरुनि जे पठनि ते कम कंदड़ मज़दूरनि ऐं ॿारनि वॾे तादाद में शिरकत कई। तकरीब में ॿारनि पारां चाइल्ड लेबर जे ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ इस्लाही टेबलोज, स्टेट ड्रामा, कलाम ऐं मुख़्तलिफ़ रांदियुनि में हिसो वरितो वियो। तकरीब में स्पार्क जे अॻवाननि काशिफ़ बजीर, वाजिद जागीरानी, शौकत सरेवाल, सहरुनिसा ऐं ॿियनि शिरकत कई। अॻवान जो चवणु हुयो त सिरुनि जे बठनि ते केतिरा ई ख़ानदान गुरबत ऐं कर्ज़नि में फासी विया आहिनि। स्पार्क मूजिब ही मुआशी दबाउ जबरी ॿारनि जी मज़दूरीअ जो वॾो सबबु आहे, जिते ख़ानदान पंहिंजे ॿारनि खे बि ख़तरनाक कम में शामिल करण ते मजबूर थियनि था। अहिड़ी सूरत हाल ॿारनि खे तालीम ऐं बुनियादी हक़नि खां महरूम करे रही आहे ऐं मज़दूरनि में ज़हनी दबाउ ऐं मायूसी पैदा करे रही आहे। इन्हनि इस्लाही थिएटर ऐं टेबलो ज़रिए भठे मज़दूरनि खे सदन हक़नि, जबरी मज़दूरीअ जे ख़तरनि ऐं ॿारनि जे तालीम जी अहमियत बाबति आगाही ॾिनी।

पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंध पाकिस्तान जो मुआशी ज़रई ऐं सामूंडी लिहाज़ खां इंतिहाई अहम सूबो आहे। 2026 में सिंध खे हिकु ई वक़्तु केतिरनि ई चैलेंजनि ऐं मौक़नि खे मुंहुं ॾियणो पियो आहे। पाणीअ जो बुहरान सभ खां वॾो मसइलो। सिंध हिन वक़्तु पाणीअ जी खोट जे संगीन सूरत हाल खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। आपाशी वाहन में पाणीअ जी घटताई सबबि ख़ासि तौर ते हेठाई सिंध जे आबाद घरनि में ॻणती वधी वई आहे। ज़रई पैदावार ख़ासि करे चांवर, कमंद ऐं ॿिनि फसलनि ते मनफ़ी असर जा ख़दशा ज़ाहिर कया पिया वञनि। ताज़नि रिपोर्टुनि मूजिबि पाणीअ जी खोट सिंध ऐं बलोचिस्तान जे केतिरनि ई इलाइक़नि में मुआशी ऐं समाजी मसला वधाए रही आहे। मईशत ऐं वापार। सिंध पाकिस्तान जे मुआशी मर्कज़ तौरु अञा बि अहम हैसियत रखे थो, जिते कराची मुल्क जो सभ खां वॾो सनती ऐं वापारी शहरु आहे। पाकिस्तान जी मईशत में 2025-2026 दौरान वाध जो रुझान ॾिठो वियो आहे, जंहिं जा मुस्बत असर सिंध जे सनत ऐं ख़िदमतुनि वारे शोबे ते बि पिया आहिनि। ज़रई ऐं सनती सरगर्मियुनि में बहितरीअ जा इशारा मिलिया आहिनि, जेतोणीक पाणीअ जी खोट हिकु वॾो ख़तरो बरक़रार आहे। मौसमियाती तब्दीली ऐं गर्मी। सिंध ख़ासि तौर ते सख़्त गर्मीअ जे लहर खां मुतासिर थी रहियो आहे। कराची ऐं ॿियनि ॾाखणनि इलाइक़नि में 44 डिग्री सेंटीग्रेड खां वधीक गर्मी रिकॉर्ड कई वई आहे। माहिरनि मूजिबि मौसमियाती तब्दीलीअ सबब गर्मी जूं लहरूं वधीक शदीद ऐं बार बार थियण लॻियूं आहिनि, जंहिं सां सिहत, पाणी ऐं बिजली जी फराहमीअ ते दॿाउ वधी रहियो आहे। सिहत जे शोबे में कुझु बहितरीअ जा इशारा मौजूदु आहिनि। ख़ासि तौर ते वॾनि अस्पतालुनि जी गुंजाइश ऐं बजट में वाध जे हवाले सां बहरहाल साफ़ पाणीअ जे खोट, गर्मी ऐं माहौलियाती मसलनि सबबि केतिरनि इलाइक़नि में सिहत जा चैलेंज बरक़रार आहिनि। कुझु रिपोर्टनि मुताबिक़ सिंध जे केतिरनि इलाइक़नि में पाणी जी मयार बाबति ख़दशा मौजूदु आहिनि। तालीम जे शोबे में स्कूलनि जी सहूलियतुनि, उस्तादनि जी खोट ऐं इंफ्रास्ट्रक्चर जा मसला अञा बि मौजूदु आहिनि। शहरी इलाइक़नि में ॻोठाणनि इलाइक़नि जे विच में तालीमी सहूलियतुनि जो फ़र्क़ु नुमाया आहे। माहिरनि तालीम जे मयार ऐं स्कूलनि में हाज़िरी वधाइण ते ज़ोर ॾिनो आहे। ज़रात। सिंध पाकिस्तान जे ज़रई पैदावार में अहम हिसो रखे थो। चांवर, कणक, कमंद ऐं कपह सिंध जूं अहम फ़सुल आहिनि। ज़रात में वाध जा इम्कान मौजूदु आहिनि, पर पाणीअ जी खोट ऐं मौसमियाती तब्दीली मुस्तक़बिल लाइ वॾा ख़तरा समुझा वञनि था। सिंध जी मौजूदा सूरत हाल में टे वॾा मसला नुमाया आहिनि। पाणी जी खोट ऐं दरियाई वसीलनि बाबति ख़दशा, मौसमियाती तब्दीली ऐं सख़्त गर्मी। तालीम ऐं सिहत जे शोबे में बुनियादी सहूलियतुनि जी ज़रूरत। साॻिए वक़्तु कराचीअ जे वापारी सरगर्मियुनि, ज़रई इस्लाहातुनि ऐं सनती बुनियादनि सबबि सिंध वटि तरक़ीअ जा मनसूबा ऐं मौकिया पिणु मौजूदु आहिनि। जेकॾहिं पाणी, तालीम, सिहत ऐं माहौलियाती मसलनि ते मौसर पॉलिसियूं इख़्तियार कयूं वञनि त सिंध मुल्क जी तरक़ीअ में वधीक अहम किरदारु अदा करे सघे थी।

0: Thanks for watching this video. For more updates, subscribe Shehla Gul Official.
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।